मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा।

वंदना कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

लीजिए, आप सुनिए। राजेंद्र जैन की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए स्वामी अशोक भारती से। विषय है सृजनशीलता।
1: देखिए, परमात्मा के इस सारे कायनात को हम देखें तो हमें एक चीज नजर आती है कि परमात्मा सतत सृजनशील है, नॉन स्टॉप 24 घंटे सृजन चल रहा है। उसका काम अरबों खरबों पता नहीं कितने वर्षों से है, लेकिन सृजन रुकता नहीं है। तो सृजन ही प्रेम और धर्म है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, अपने घोड़े पर बैठकर हर दिन सुबह शहर में घूमता था। रोज का उसका नियम था। उसको बड़ा सुंदर अनुभव होता था यह देखने में कि कैसे मेरा शहर विकसित हो रहा है, कैसे उसकी राजधानी अधिक से अधिक सुंदर हो रही है। उस राजा का यह स्वप्न था कि उसे पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह बनाया जाए उसकी राजधानी को। वो हमेशा अपने घोड़े को रोकता और एक बूढ़े व्यक्ति को देखता। उसका रोज का नियम था। उस बूढ़े की उम्र करीब करीब 120 वर्ष की थी। इतना वृद्ध था वो आदमी। तो राजा जब घूमने निकलता तो उस बूढ़े व्यक्ति के पास, जो बगीचे में काम करता रहता, बीज बोता, वृक्षों को पानी देता, ऐसे वृक्ष जिनको बड़े होने में सैकड़ों साल लगेंगे, फिर भी उसकी रखवाली करता वो बूढ़ा व्यक्ति। उसे बड़ी हैरानी होती कि यह आदमी आधा कब्र में जा चुका है, 120 साल का हो गया है, किसके लिए ये बीज बो रहा है, ये तो जाने वाला है। वो कभी भी इस वृक्ष पर आए हुए फल और फूलों को कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्षों को बनने में, ऊंचा होने में टाइम लगता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपनी मेहनत का फल देख पाएगा। एक दिन वो बादशाह अपने को रोक नहीं पाया। रोज देखता उसको, वृद्ध व्यक्ति को बगीचे में सतत काम करते हुए, और काम करते हुए प्रसन्नता यह भी देखता। वो रोक नहीं पाया, अपने घोड़े से उतरा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर वो पूछने लगा, बाबा मैं हर दिन यहां से गुजरता हूं और एक प्रश्न मेरे दिमाग में रोज आता है, अब यह असंभव हो गया मेरे लिए कि मैं आपके कार्य को क्षण भर बाधा पहुंचाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसके लिए ये बीज बो रहे हैं। ये वृक्ष जब तैयार होंगे, युवा होंगे, तब आप यहां नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट की तरफ देखा, हंसा और फिर बोला, यही तर्क अगर मेरे बाप दादाओं का होता तो मैं फल और फूलों से भरे इस सुंदर बगीचे से महरूम हो गया होता। मेरे बाप दादा भी यही सोचते कि हमें क्या करना है। तो आज ये जो वृक्ष बगीचा मेरे सामने लहलाता है, इससे मैं महरूम हो गया होता। हमारा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी माली है। मेरे पिता बाप दादाओं ने जो बीज बोए उसके फल मैं खा रहा हूं, और मेरे बच्चों के बाद बच्चों का क्या हो गया, इसकी रखवाली, इसकी सुविधा मैं जुटा रहा हूं। लोग मेरे बगीचे को दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे वृक्ष है जो हजारों साल पुराने हैं, और मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कृतज्ञता से कर सकता हूं, धन्यवाद से कर सकता हूं। माली कहता सम्राट से, जहां तक बात बीज बोने की है, जब बसंत आता है और जब बसंत आने के बाद पत्ते उगते देखकर मुझे इतना आनंद आता है कि मैं भूल ही जाता हूं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। उस सृजनशीलता में मुझे इतना आनंद आता है एक पत्ते को खिलते देखकर।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे।

विषयथा सृजनशीलता। चिंतन आपने स्वामी अशोक भारती से सुना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिया आवास के कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था। खेत कल्याण में 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरीके अपनाएं। चौपाल में संध्या 7 किसान भाई व्हाट्सएप ईमेल व पत्रों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे पत्रोत्तर। बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। मुरमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगी शहनाज। मानस गाना आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर भाग संख्या होगी 312। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। कुछ भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दिन में 2:30, संध्या 7:45। सुहाना सफर ये कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे 10:00। सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:00। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 12:05 पर। रात 8:15 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा एक ही फिल्म से। महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे पद्मश्री से सम्मानित तगाराम भील अकेलापन कर दे बीमार, कम बजट में रसोई प्रबंधन, बाजरे और ज्वार के पौष्टिक व्यंजन। फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। इसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। सराइकी का समय रहेगा 6:05। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर और 9:15 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3:00, संसद समीक्षा 8:00, स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर, चर्चा का विषय 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल के संपादित अंश 10:00। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली की चिट्ठी 6:40 पर हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रचा झा।

0: प्रशासनेन उक्तं यत् नीति प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्ये दल सदस्या नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशाणां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमन्त्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमन्त्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां सम्बन्धित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानाम् आवश्यकताम् विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मेसिडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मेसिडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः सम्भावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलिपीन्स देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्रिस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।

0: सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: इंडिया विल होस्ट अ थ्री डे मीटिंग

0: व्यवस्था और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई आम के बगीचा में करता रहना चाहिए। फलता फूलता समय पौधा में फूल आने सुफल बैठने तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जरूरत के अनुसार पौधा ने और पौधा का जगह थामला है बंग में निराई गुड़ाई भी करता रहना चाहिए। साल में 2 बारी बिरखा होने से पहली और फूल आने से पहली पेड़ों के बीच की खाली जमीन बिंगी गहरी जुताई भी कर देनी चाहिए किसान भाइयों, ताकि आपा ने बिंगवा की एक खरपतवार और कोई और समस्या हुए तो वह भी खत्म हो जाए और कचरो जो है वो उगेड़ो बिल्कुल पूरी तरह आम के बगीचा में खत्म हो सके। अब बात करांगा अमरूद के बगीचा की और गर्मियों के मौसम में अमरूद के बगीचा की सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करा तो आम खास 7-10 दिन के अंतराल पर ई मौसम में सिंचाई करता रहना चाहिए और अमरूद के बगीचा में किसान भाइयों 15-20 दिन के अंतराल पर सर्दियों में सिंचाई करता रहना चाहिए। बिरखा ऋतु की फसल लेने के वास्ते सिंचाई फरवरी मार्च में शुरू कर देनी चाहिए और शरद ऋतु की फसल लेने के वास्ते सिंचाई जून महीने से शुरू कर देनी चाहिए। तो इन बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का बगीचा में अच्छी फलत प्राप्त करने के वास्ते आम बातों को आप पूरा ध्यान रखा। अब बात करांगा अंगूर के बगीचा की, क्योंकि अपना ठेंग क्षेत्र में किसान भाइयों अंगूर का बगीचा भी खूब लगा रखे और अंगूर के बगीचा में अगर सिंचाई की बात करा आप तो टाइम पर सिंचाई देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और सिंचाई के सागे सागे निराई गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंगूर की बागवानी में सिंचाई की मात्रा जलवायु भूमि और बेलों की उम्र पर निर्भर करे। अंगूर की उपयुक्त उपज लेने के वास्ते वो जरूरी है कि टाइम टाइम पर भी सिंचाई करी जानी चाहिए। सिंचाई को विशेष महत्व कटाई छंटाई के बाद में फलों के पाकने तक है। इनके बाद में इनकी सिंचाई की जरूरत कौन पड़े नहीं, इन वास्ते किसान भाइयों कटाई छंटाई के बाद और खाद देने के तुरंत बाद में सिंचाई करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फल तोड़ने से 1 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इस फायदो वो होगा कि फल जगह है वह मीठा हो जाएगा, फलों में मिठास बढ़ जाएगी। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई भी करनो कतई भूलनो नहीं और खरपतवारा ने निकालता रहना चाहिए। जरूरी है कि खरपतवारा नष्ट करने को खातर 2,4-D को प्रयोग कदी भी अंगूर के बगीचा में नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों इन बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। निराई गुड़ाई करा आप कसी की सहायता से या अन्य तौर तरीका के द्वारा भी आप निराई गुड़ाई कर सका। और अब बात करांगा नींबू वर्गीय फल वृक्षों की, क्योंकि नींबू वर्गीय फल वृक्षा में आपना अठे किन्नू मौसम्बी माल्टा संतरा नींबू आंगी बागवानी है तो अंग में फूल खिलने से 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और जिये ही फूल खिल जाए तो सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों गर्मियों में करीब 7-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, करता रहना चाहिए। सर्दियों में वो अंतराल 15-20 दिन को भी आप बढ़ा सकें राख सकें और सिंचाई करता रहना चाहिए इन तरह से तो बागवानी में नुकसान होने की संभावना कम रहे। इनके साग साग ही अगर आप चाहवा तो छोटी बागवानी हुए पौधा हुए बी टाइम का आप अंतरास्य खेती भी लेस का कोई न कोई फसल दूसरी दलहनी फसलों की बुआई करके आप अगर फलत लेवा अच्छी पैदावार लेवा तो आपन लाभ मिल सके। अब बेर के बगीचा की बात करांगा, क्योंकि बेर भी अपना ठेंग क्षेत्र में किसान भाइयों बागवानी लगा रखी है तो बेर के पौधा में कम पानी की जरूरत होए बिया तो किसान भाइयों आमतौर पर नया पर्रो निकलता टाइम और फूल आमता टाइम और बाकी बढ़वार के टाइम में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और फूल और फल बनता टाइम थोड़ी सी एक बार आप सिंचाई रोक देवा तो बीच में आपा ने किए कि फल जमने तक आपन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बाद में सिंचाई देता रहना चाहिए। तो यह बात फल वृक्षा में अनेक भांत का फल वृक्ष जगह अपना ठेंग क्षेत्र में किसान भैया लगा रखे बांगवा टेमो टाइम सिंचाई देने की बात और किसान भाइयों टेमो टाइम सिंचाई सही तरीके से देवांगा तो आपा ने लाभ ज़्यादा मिलेगा। पर अब है हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: खेती रावास्ती कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे फलदार पौधों में सिंचाई व्यवस्था विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं राम जसवाल में की।

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे राम जसवाल वाल्मीकि। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 312।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है। रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बलरूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके। यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है। शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता। इन भुजाओं को देख जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 312। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, नेट बैंकिंग आज की आवश्यकता बन गया है और नेट बैंकिंग का उपयोग सावधानी से न किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। नेट बैंकिंग में कुछ सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए ऐसे शब्दों और संख्याओं का उपयोग करना चाहिए जिन्हें आसानी से पहचाना ना जा सके। हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे ईमेल और फ़ोन पर यूज़र आईडी या

पासवर्ड अन्य संवेदनशील जानकारी नहीं मांगता है। सार्वजनिक वाईफाई जैसे स्थानों पर अपनी नेट बैंकिंग का उपयोग न करें, क्योंकि आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर हमेशा एक एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे अपडेट रखें। अपने बैंक स्टेटमेंट की नियमित रूप से जांच करें और किसी भी असामान्य गतिविधि जैसे कि धोखाधड़ी लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करें। स्पैम ईमेल या मैसेज में दिए गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। ये फिशिंग घोटाले हो सकते हैं जो आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपका बैंक मल्टीफैक्टर या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी की सुविधा देता है, इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, मातृशक्ति का अर्थ है नारी की वह आंतरिक और असीम क्षमता जो सृजन, पालन पोषण, त्याग और संस्कारों की आधारशिला है। यह वह शक्ति है जो न केवल परिवार को जोड़कर रखती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माँ को सृष्टि की जन्मदात्री माना गया है। वह शारीरिक और भावात्मक रूप से बच्चों का पालन पोषण करती है। मातृत्व में धैर्य, सहिष्णुता और त्याग की भावना सर्वोपरि होती है। परिवार की खुशी के लिए वह अपना सर्वस्व नौछावर कर सकती है। वह मातृशक्ति ही होती है जो बच्चों में नैतिकता, प्रेम और संस्कृति के बीज बोती है। आवश्यकता पड़ने पर मातृशक्ति दुर्गा का रूप लेकर अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। आज के समय में मातृशक्ति घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर विज्ञान, रक्षा, राजनीति और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। मातृशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की वह कल्याणकारी और प्रेरक शक्ति है, जिसके बिना किसी भी समाज या राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मातृशक्ति द्वारा दिए गए संस्कार ही आने वाली पीढ़ी और राष्ट्र की प्रगति की दिशा तय करते हैं।

सुप्रभात कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। दोस्तों, दया का भाव एक सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो सकती है। दया ही मनुष्य को पवित्र व ईश्वर के करीब ले जाती है। संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, जीसस, गुरु नानक आदि इन सभी ने दया और करुणा के भाव को श्रेष्ठ बताया है। परोपकार की भावना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। दया निस्वार्थ होती है। जिस दया के पीछे कोई स्वार्थ छिपा होता है उसे हम दया नहीं कह सकते। दया प्रवाह में मनुष्य की सारी विकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। भगवान ने करुणा और दया की भावना मनुष्य को इसलिए दी है।

है ताकि यह संसार बना रहे। न्याय व धर्म की रक्षा करना सदा से मानव धर्म रहा है। दया से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। धर्म का मर्म ही दया है। दया भाव से ही धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लख घट में प्राण।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए क्रांति फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की हैं।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख

0: तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया

0: पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Drobdi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge

0: सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैनुल अक्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमाया तोसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए भजन, कलाकार हैं अनूप जलोटा।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे, कलाकार थे अनूप जलोटा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः है के 9 बजने वाले हैं। अब आप सब प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज टू परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश, आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से

0: छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी करेंगे। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित जयपुर मेट्रो फेज टू परियोजना का कॉरिडोर 41 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित है। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जरिए पूरी की जाएगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 4 जुलाई को किया था। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। इनमें 105 माइनिंग लीज और 30 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी शामिल है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3.5 महीनों में 14 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की है, जबकि पूरे साल में 55 ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का कहना है कि ई नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा मिला है और निवेश, रोजगार तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गर्भवती महिला की ट्रैकिंग कर रहा है। इस संबंध में कल जयपुर में स्वास्थ्य भवन में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए गए हैं और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। जुलाई महीने की प्रस्तावित प्रसूति सूची में 7,000 से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवतियां चिन्हित हुई हैं। इन महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीवियर एनीमिया केसेस को नॉर्मल केसेस में, लो एनीमिया केसेस में क्या क्या मेडिकल इंटरवेंशन से पॉसिबल है, SMS फैकल्टी भी था। जुलाई के प्रेगनेंसीज जो ड्यू है महिलाओं की, उनके ऊपर विशेष फोकस है और हर महिला के साथ जहां जहां रेफरल हॉस्पिटल्स का मैपिंग भी कर दिया गया है और बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। 54,000 आशा, 17,000 ANMs, सारे मेडिकल कॉलेजेस, CHCs, PHCs इस बैठक में 4 दिन से मेरे साथ बैठे थे और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा है और सभी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कंटिन्यूम केयर के।
0: प्रदेश के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण सेवा फॉलो अप कैंप शुरू हो गए हैं। इन शिविरों में आमजन के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पट्टे, नामांतरण, पेंशन, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण सहित विभिन्न कार्यों का लाभ लिया। नगर परिषद प्रशासन ने बताया कि राजकीय अवकाश को छोड़कर ये शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। वहीं पाली में भी फॉलो अप शिविरों के माध्यम से आमजन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में ऐसे मामलों में लगभग 28% की कमी आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इन आंकड़ों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को SC/ST वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई, संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज लगभग 68% मामलों का निस्तारण अब 60 दिन के अंदर किया जा रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपए के साइबर घोटाले के मामले में डीडवाना पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारे लाल शिवरान ने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी इमरान अली से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसका अंतर्राज्यीय गिरोह राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकारी छात्रवृत्ति और विभिन्न जनकल्याणकारी योजना

0: संस्थाओं में बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा कर चुका है। ये गिरोह दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित सरकारी पोर्टलों पर फर्जी लाभार्थी तैयार कर योजनाओं का दुरुपयोग भी करता था।
1: इमरान नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है। ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड करके और सभी प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे ये अल्पसंख्यक हो या दूसरी तरीके की है, उसमें ऑनलाइन सेन लगा के और फ्रॉड करके और वो छात्रवृत्ति का पैसा उठा रहे थे। तो इसमें इमरान को भी हमने गिरफ्तार किया है। पूर्व में 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें जितने भी अपराधी और इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबको गिरफ्तार करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
0: राज्य में साइबर ठगी की रकम तुरंत रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन और बैंकों के बीच समन्वय और तेज किया जाएगा। इसे लेकर जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि शिकायत मिलने और बैंक खाते पर रोक लगाने के बीच का समय न्यूनतम होना चाहिए ताकि ठगी की राशि समय रहते रोकी जा सके। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को

0: और बैंकों के बीच समन्वय और तेज किया जाएगा। इसे लेकर जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि शिकायत मिलने और बैंक खाते पर रोक लगाने के बीच का समय न्यूनतम होना चाहिए ताकि ठगी की राशि समय रहते रोकी जा सके। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को 1930 कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली समझने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी बढ़ाने और बैंकों तथा साइबर पुलिस के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में 190 चिन्हित बैंक शाखाओं पर AI आधारित निगरानी व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बरसात हो रही है। अगले 4 से 5 दिन तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आज भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान पिलानी में 36 मिलीमीटर, कोटा में 28.6 और चूरू में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। पाली में कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। बारा जिले में कल मूसलाधार बरसात हुई जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली।
1: लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को बारा जिला मुख्यालय समेत संपूर्ण जिले में जोरदार बारिश हुई। छिपाबड़ो क्षेत्र में सुबह से शाम 4 बजे तक 5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते अंधेरी नदी में उफान आ गया। वहीं शाहबाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से सिरसा नदी भी उफान पर रही। अच्छी बारिश होने से खेतों में सूखती फसलों को भी जीवन दान मिल गया, तो वहीं तापमान में गिरावट होने से आम जन को भी भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश, आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। हमारी कलाकार हैं शहनाज।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अभी आपने मनोमंगल कार्यक्रम सुना, कलाकार थे शहनाज। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म साथी से, आवाज़ें मुकेश और सुमन कल्याणपुर की हैं।

रिसेप्शनी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं।

ली जब सुनिए गोरा और काला फिल्म का गीत, आवाज़ें मुकेश और लता मंगेशकर की हैं, गीत आनंद बख्श ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। अब सुनिए फर्श फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। फिल्म संगीत में आपने कुछ युगल गीत सुने। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर। दोस्तों, आज हमारे देश के महान दिग्गज गायक मुकेश की जयंती है। उन्हीं के द्वारा गाई कुछ नगमे सुहाना सफर कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश हिंदी सिनेमा में अपने दर्द भरे, भावपूर्ण और रूहानी गीतों के लिए जाने जाते हैं। मुकेश शुरू में फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। उन्होंने बतौर एक्टर सिंगर 1941 की फिल्म निर्दोष से शुरुआत की, लेकिन फिल्म असफल रही। उन्हें एहसास हुआ कि एक फर्स्ट क्लास सिंगर बनना सेकंड क्लास एक्टर बनने से ज़्यादा बेहतर है, तो उन्होंने गायक बनने का रास्ता चुना।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच

0: पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जोरावर माथ

मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जोरावर माथुर एक इंजीनियर थे और माता का नाम चांदरानी। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की और पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी की। मुकेश की बहन की शादी थी जिसमें इनके दूर के रिश्तेदार अभिनेता मोतीलाल भी आए। मनोरंजन के लिए मुकेश को गाने के लिए कहा गया क्योंकि मुकेश की संगीत में रुचि थी और वो केएल सहगल के गीत गाया करते थे। मुकेश के गीत सुनकर अभिनेता मोतीलाल ने उन्हें मुंबई आने के लिए कहा। यहीं से शुरुआत होती थी मुकेश के गायक और अभिनेता बनने की।

मुकेश एक नेक दिल इंसान थे। ज़रूरत पड़ने पर वो साथियों की सहायता भी किया करते थे। उनका सभी के साथ अच्छे और मधुर संबंध थे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, एक ऐसी आवाज जिसके जादू ने हर किसी के दिल को छुआ, एक ऐसे गायक जिनकी गायकी का असर भारत ही नहीं विदेशों में भी हुआ, उनकी आवाज़ में ऐसा सम्मोहन था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था।

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश द्वारा गाए कुछ फिल्म नगमे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप

0: हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुकेश ने दर्द भरे गीतों के साथ मस्ती भरे प्रेम के और हर तरह के गीतों को अपनी आवाज़ दी है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भारत में मुकेश एक ऐसे गायक थे जिनकी गायकी का असर भारत ही नहीं, रूस, जापान, अमेरिका, सभी जगह पर था। जिनके गीत सुनकर लोग झूम जाते थे, वो आज भी झूमते हैं। मुकेश की आवाज़ में एक ऐसा सम्मोहन था जो बरबस अपनी ओर खींच लेता था।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुकेश के अधिकतर गीत सुपरहिट रहे। 1958 में आई फिल्म यहूदी का ये गीत ये मेरा दीवानापन है, या मोहब्बत का सुरूर तू ना पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। गीत दिलीप कुमार तलत महमूद से गवाना चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन इस गीत को मुकेश से गवाना चाहते थे। ये गीत मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। जब दिलीप साहब ने इस गीत को सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, मुकेश का स्वभाव सादगी से परिपूर्ण था और स्वभाव हमें गीतों में भी नज़र आता था। कन्हैया फिल्म का यह गीत जो अलहड़ता लिए हुए था, लेकिन मुकेश ने इस गीत को बहुत ही सादगी के साथ गाया। मुकेश के गायन की यह विशेषता थी कि जो उन्हें अन्य गायकों से अलग करती है।

यूं तो मुकेश ने अपने समय के सभी अभिनेताओं के लिए गीत गाए, लेकिन अभिनेता राज कपूर के साथ मुकेश का रिश्ता इतना गहरा था कि राज कपूर अक्सर कहा करते थे कि मैं सिर्फ एक शरीर हूं और

दोस्तों, मुकेश की मखमली और दर्द भरी आवाज़ के दीवानों की आज भी कोई कमी नहीं है। मुकेश ने अपने गीतों के जरिए संगीत प्रेमियों के दिलों में जो जगह बनाई है वह आज भी कायम है। अब सुनिए कार्यक्रम के आखिर में ये गीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम का अगला गाना समाप्त कीजिए शर्मिली फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ है, गीत नीरज का और संगीत एस टी बर्मन का।

ये गाना है ऊंचे लोग, फिल्म से किशोर कुमार और सलमा आगा की आवाज़ें हैं। संगीत आर डी बर्मन ने दिया, गीत अनजान का।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का गाना लता की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए के तहत कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

अगला गाना अजनबी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, गीत आनंद बख्शी का और संगीत आर डी बर्मन का।

ये गाना हमने लिया था फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से। गीत गाया किशोर कुमार ने, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अपना देश फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों हमें इजाज़त दें कार्यक्रम सैनिकों के लिए समाप्त करने का। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आज का कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे चंद गज़लें। खेत खलिहान 12:50 पर चर्चा का विषय होगा भोजन की पौष्टिकता कैसे बनाएं। ये जानकारी आपको देंगे रमेश चावरिया।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होगा दिन में 1 बजे। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे कृष्णा कुमारी के साथ। वार्ता के विषय होंगे, चर्चा के विषय होंगे पद्मश्री से सम्मानित तगाराम भील, अकेलापन न कर दे बीमार, कम बजट में रसोई प्रबंधन, बाजरे और ज्वार के पौष्टिक व्यंजन। दोपहर 2 बजे मिडडे न्यूज आप सुना करते हैं। 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस और युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे सुनेंगे पूजा वर्मा के साथ, जिसमें फरमाइशी प्रोग्राम आपकी पसंद रहेगा। 6:05 पर सराय की एपिसोड 14, 6:30 हिंदी में समाचार होंगे प्रादेशिक, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, शाम 7 बजे रमेश चावरिया के साथ चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे पत्रोत्तर, व्हाट्सएप, ईमेल व पत्रों पर आधारित, बाजार भाव, मौसम की जानकारी उपलब्धता के आधार पर आपको बताई जाएगी। 7:45 पर फिल्म संगीत, 8 बजे संसद समीक्षा, 8:15 पर एक ही फिल्म से जानकारी और गीत के साथ

दिल्ली केंद्र से 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज़ 8:09 9 बजे, सुगम संगीत हमारे केंद्र से होगा 9:15 पर। चर्चा का विषय दिल्ली केंद्र से 9:30 पर। रात 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 11:05 पर न्यूज इन इंग्लिश और 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा। ये थे हमारे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार, मैं हूं आज आपकी रेडियो मेजबान शोभा। श्रोताओं, कुछ आवाज़ें वक्त की पाबंदी से परे होती है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर खामोश नहीं होती, बल्कि हवाओं में घुलकर अमर हो जाती हैं। आज ऐसी ही रूहानी और पावन आवाज़ हिंदी सिनेमा के दर्द के सहनशाह और द वॉइस ऑफ द मिलियंस मुकेश चंद्र माथुर जी की पुण्यतिथि है। आज ये विशेष कार्यक्रम उनके सुरीले सफ़र के नाम है, जिसने हर दिल को धड़कना और हर आँख को रोना सिखाया। मुकेश जी ने हमेशा अपनी सादगी और सीधे दिल से गाए गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आइए इस सुरमई सफ़र का आगाज़ करते हैं राज कपूर साहब के इस अमर गीत के साथ, जो आज भी हर दिल की दास्तां हैं, और उन्हें हमारा मुकेश जी को सच्चत नमन। इस गीत के साथ हम देते हैं उनको श्रद्धांजलि।

श्रोताओं, आज महान गायक मुकेश जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है आज। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ था।

खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन सरल रहना बहुत ही मुश्किल। गुरुदेव टैगोर की ये बात मुकेश जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वे जितने बड़े फनकार

खुश रहना बहुत आसान है लेकिन सरल रहना बहुत ही मुश्किल। गुरुदेव टैगोर की ये बात मुकेश जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वे जितने बड़े फनकार थे दिल के उतने ही साफ और सीधे इंसान थे।

श्रोताओं, जब मुकेश जी का जिक्र आता है तो शो में राज कपूर साहब का चेहरा अपने आप आंखों के सामने घूम जाता है। यह सिर्फ एक गायक और अभिनेता का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये एक जिस्म और दो जान का रिश्ता था। जब 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट में दिल का दौरा पड़ने से मुकेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो राज कपूर साहब फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने उस वक्त तो जो शब्द कहे वो इतिहास बन गई। जब उनके निधन की खबर फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची, तो राज कपूर ने कहा था, मैंने अपनी आवाज़ खो दी है। वाकई राज कपूर साहब का वह दर्द आज भी उनके इन गीतों में महसूस किया जा सकता है।

श्रोताओ, अक्सर हम सोचते हैं कि मुकेश जी ने सिर्फ दर्द भरे और उदास गाने ही गाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब मुकेश जी पर्दे पर प्यार का इजहार करते थे तो सामने वाले का दिल पिघल जाता था। उनकी आवाज़ का रोमांस इतना सीधा और सच्चा होता था कि उसमें कोई दिखावा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा मोहब्बत नज़र आती थी। चाहे वो चांद सी महबूबा की तुलना करना हो या महबूबा को देखकर दिल में ख्याल आना हो, मुकेश जी ने रोमांस को एक अलग ही ऊंचाई दी। आइए आज उनकी जयंती पर सुनते हैं उनका गाया ये गाना, जिसे सुनकर हर दिल धड़क उठता है।

श्रोताओं, मुकेश जी ने जब इन शब्दों को अपने ख़ास अंदाज में गाया तो उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि सुख दुख के इसी ताने बाने का नाम ज़िंदगी है। आज वो भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया में मोहब्बत जब तक रहेगी, जब तक रेडियो पर ये सुर गूंजेंगे, मुकेश जी अपनी सुरीली परछाई के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी इस जयंती पर उन्हें दिल से नमन करते हैं और खो जाते हैं इसी बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमे के सफ़र में।

इसी की गीत के साथ कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 12:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के फनकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई इन गज़लों के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेत खलिहान।
1: श्रोताओं राम राम। भाई लोगों, आज बात करांगा आपा भोजन की पौष्टिकता के बारे में, क्योंकि अब आते भी जानो के भारत में लगभग 70% जनता गांव में निवास करे, जका में कुछ मिनक आज भी अशिक्षित यानी अनपढ़ है, और ई अनपढ़ता के कारण संतुलित और पौष्टिक भोजन का ज्ञान का अभाव में बहुत सी बीमारियां से पीड़ित रहे। कई बार ज्यादा खर्चा के डर से भी अच्छो भोजन या खानो पीनो को नहीं कर सके। नहीं भाई लोगों, बहुत से ऐसा माध्यम है जिसे कम खर्चा के माँ अपने आस पास है या घर के माँ उपलब्ध खाने पीने की चीजें से आप स्वादिष्ट और पौष्टिक जो को भोजन है वो बना के शरीर की पोषण संबंधी जितनी जरूरत है बना पा पूरी कर सका। भाई लोगों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को एक सिद्धांत है कि कम खाओ लेकिन जो को भी खाओ अच्छो और हितकर खाओ। इंगो मोटो स्वर थन बता देवा के जितनी भूख है बीसू थोड़ो कम खाओ, और आ बात जो है अपना बुढ़ा बडेरा भी क्यों था, और हमेशा साफ सुथरो और ताजो भोजन ही अपन करनो चीजे। भाई लोगों, आपने घर के माँ ही आसानी से उपलब्ध साधनों को उचित उपयोग करके अपा स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से प्रोटीन ऊर्जा ले सका और कुपोषण से बच सका। श्रोताओं, कई इसी आसान सी विधियां हैं जिसे आपने खाने को पोषक गुणवत्ता बढ़ा सका। बात करें अंकुरित अनाज की, तो अंकुरण एक इसी प्रक्रिया है जगह गा की भी त्रियांगो खाद्यान्न जिया अनाज है दलहन है बंगा साबुत दाना नापा उचित हवा और तापक्रम और नमी के माध्यम से अंकुरित कर लेवा यानी अनाज न उगा लेवा। जब अनाज उगनो शुरू हो जाए और जड़ा निकलनी शुरू हो जाए तो बाद में आपा बिने खाने के काम में ले सका। भाई लोगों, अंकुरित अनाज यानी जब बीज उगनो शुरू हो जाए तो बिंग माँ जैव रासायनिक क्रियाओं दाना में पौष्टिकता की बढ़ोतरी हो जाए। अंकुरित कणक में प्रोटीन की मात्रा लगभग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाए, और आज आ बात भी थाने बता देवा के लगभग सगड़ा खाद्यान्न में विटामिन सी 25% से 30% तक बढ़ोतरी हो जाए। और भाई लोगों, अंकुरित अनाज में लोहा फॉस्फोरस विटामिन बी भी सांगोपांग बढ़ जाए, और इनके अलावा छिलकाड़ो जो को अनाज है बिंग मा फाइबर दपाऊ को हुए जका मिनखा में कब्जी की शिकायत रेवे तो बे छिलका समेत अनाज न खानो चाहिए। जबाने आपना बुढ़ा बडेरा पुराने टाइम में दड़ियो खिचड़ी लापसी घूगरी और जकी कणक ने उबाल के तीज त्योहारा में आप खाता तो वो एक अच्छो और पौष्टिकता से भरेड़ो खाद्यान्न हों तो जको छिलका समेत अपा खा लेता। अपा घर में रोटी बनावा और घर की माता भिणा आटो छान गे जकी चोकर बारे फेंक देवा तो इशो नहीं करनो है। भाई लोगों, छिलकाली दाल यानी साबुत दाल जगह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होवे इन वास्ते आपने हमेशा छिलकाली साबुत दाल को ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। पहली आप बात करी का चोकर युक्त चुप आटो है बीसू बड़ेड़ी जी की रोटी है या फिर भोजन है वो ही अपन खानो चाहिए। पहली तो पुराने टाइम में घर की चक्की से ही हाथ से अनाज पीस के भोजन तैयार कर लेता, और इनका कई फायदा भी है जहाँ चक्की चलाने से कसरत भी हो जाती और स्वास्थ्यवर्धक आटो भी हाथों हाथ तैयार हो जाए तो, और कणक का जो पोषक तत्व है वे भी सुरक्षित रहता। लेकिन ये भाग दौड़ भरी जिंदगी गवा मिनख जो को है वो पुरानो खानो पीनो लगभग छोड़ ही दियो। भाई लोगों, ईशा बहुत सा पोषक तत्व मोटा अनाज में और चोकर में हुए जका अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हुए। बाजरा को खिचड़ो दलियो राबड़ी ये सब सुपाच्य भोजन हुए चालनी से छान गे जको आटे की आप रोटी बनावा बीस ज्यादा अच्छो बिना छाने आटे से बनाई जी की रोटी है बा हुए, क्योंकि कण की चोकर में बहुत सा खनिज तत्व विटामिन खनिज लवण हुए जका आप आटो छान गे बिन फेंक देवा यह नहीं करनो ऐसा। जद भी आप अनाज पिसावा तो हमेशा मोटो आटो रखा, क्योंकि अपनी जकी घर की माता बिना भी कई बार कह दिया आटो जो है वो बारीक पिसा गए हो महीन पिसा गए हो तो आटक में जका पोषक तत्व है वे ज्यादा बारीक पीस न चुकी नष्ट हो जाए। तो इन वास्ते आप जद भी आटो पिसा गए तो अपने आटो जो है वो थोड़ा सा मोटो रखना चाहिए ताकि बिना छिलका जका है वे भी थोड़ा सा बचा रहे और अपने खाने के साथ आप खा लेवा पाने तो बीच का अपने जकी फाइबर की जकी मात्रा है वह अपने शरीर का पूर्ति होती रहे। भाई लोगों, बात करें आप राम रोट की, पुराने टाइम में आ भी बात है सुनेड़ी हो सी लेकिन आजकल तो कई मिनट की चीज ना जाने भी कोनी ओ भी एक सुपाच्य

और पौष्टिक खाणो है, जका भाई मीनक रोटी खाणो पसंद ना करे बे राम रोट बना के भी खा सके, ज्यादा खिचड़ी भी कौन करने पड़े और ज्यादा टाइम भी कौन लागे नहीं। भाई लोगो राम रोट सब्जियां ना आटा में गूंद के बनाई जाए, जहाँ पालक है, मेथी है, बथु है, चुलाई है, अने सगड़ा ना बारीक काट के और थोड़ो पीस लेवा और बाद में आटा के मां गूंद लेवा। इंग मां तोरी, गाजर, मूली, पेठो, लौकी, जिक्की भी आपने घर में मौजूद हुए बन कद्दूकस करके मिलासका। और श्रोताओ, राम रोट ने और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने खातर आप इंग मां जहाँ अजवाण है, मेथी है, नमक है, वो भी मिलासका। और जब राम रोट तैयार हो जाए तो बाद में बिना अपन दही सगे या फिर अपा लुखी भी खा सका, बड़ी स्वादिष्ट हुए, बड़ी अच्छी लगे और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी फायदेमंद हुए। तो जरूर राम रोट बना के खाया करो ताकि आपने जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त बने रहे, अपने शरीर में की जान है जी बापरी रहे। और इनके अलावा जी हम बात करें अपा दूध आटे की रोटी और वो भी एक बढ़िया खाणो है, जगह टबरिया अपने घर आंगा माँ दूध ना पिया नहीं बन आपा दूध आटे की रोटी बना के भी खुआ सका, ताकि दूध से बच्चों जो है वो प्रोटीन भी ले सके और टाबरिया के वास्ते वो खाणो जो है बड़ो फायदेमंद हुए। तो जरूर जका टाबर दूध ना पिया बना दूध आटे की रोटी बना के और जरूर खुआ। और बिना टाबरा के सगे सगे कोई भी खाना ने खा सके, क्योंकि वो एक संतुलित आहार है, सबके लिए फायदेमंद हुए। और मिस्सी रोटी भी बड़ी गुणकारी हुए, इन्हें बनाने खातर आपने कणगा आटा का माँ एक धोबो या फिर जरूरत के हिसाब से मोट मूंग या चना को जो आटा वो मिला लेवा और बाद में इन्हें गूंद के और बढ़िया तरीके से आप इनकी जी रोटी है वह बना के खास का। और इनके अलावा आप जब भी घर का माँ आटो पिसवा के लियावा या फिर घरे पिसा तो भी मक्के का थोड़ा सा सोयाबीन की जी दाल है वह भी मिला सका, क्योंकि वो जो को आटो है मिसो आटो है और मिसो जो को आटो है वो बड़ो फायदेमंद हुए। किलो कणक का माँ अपने 2 किलो सोयाबीन मिला लेवा तो ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि सोयाबीन का माँ 43% तक प्रोटीन हुए। तो आपने मिसी रोटी भी खानी चाहिए और पुराने टाइम का माँ लोग खाया करता और स्वस्थ भी रहता, जका भाई लोग मिसी रोटी खानी चाहो तो भाई मूंग मोट है या फिर चना को जो आटा वो मिला के और बढ़िया तरीका से बिन गूंद के और मिसी रोटी तैयार कर सके तो बाबड़ी एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हुए। रोटी के बाद बात आवे सब्जी की, क्योंकि सब्जी बिना तो रोटी थे भी जानो का स्वादिष्ट कौन लागे नहीं। तो भाई लोगों आपने घर का माँ आप कई बार देखा कि घर की जी लुगाया पताया है सब्जी ने पहला तो छोले सी और ब्यू बाद का मैं बिन बारीक काट के और फिर बाद में धोना का जो को काम है वो कर सी, तो वो जो को तरीको है वो सब्जी को या मांस का ठीक होने नहीं, क्योंकि ई तरह से सब्जी गज का जरूरी पोषक तत्व है भी खत्म हो जाए और जब अपनो स्वास्थ्य खराब हो तो डॉक्टर जी कन जाके अपना इलाज करवा और फिर वे जो का पोषक तत्व आप दवाई के रूप में लेना पड़े तो अपना पीसा टक्का भी लगे, टाइम भी खर्च हुआ और सागे अपने तकलीफ भी भोगनी पड़े। तो आपने सब्जी बनाना को जो को तरीको है वो आज ही आपने थोड़ा सा सुधारना पड़ सी फिर ही काम चाल सी। भाई लोगों पहली आपने बिना काटे बिना छिले जो की सब्जी है बिना धोनी चाहिए और बाद में बिना काटनी चाहिए, हो सके तो कुछ किसी सब्जी है जो आप बिना काटे बिना छोले ही बना सका, क्योंकि जो को छिलको है वो थाना थोड़ी देर पहले हम बताए हो कि बिंग फाइबर की जी मात्रा है वह अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद हुए। तो आप जब भी सब्जी बनाओ तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जकान आपने छीलने की जरूरत कौन पड़े नहीं और आप बिना छिले भी बना सका, और जितनी सब्जी आप बारीक काटांगा बीता ही ज्यादा पोषक तत्व जका है भी नष्ट हो जाएगा। तो ये वास्ते सब्जी आपने मोटी मोटी काटनी चाहिए और बाद में सब्जी ने कुछ एक देर भाप में पकानी चाहिए और थोड़ी देर बाद जब भाप में पक जाए तो भी बाद में आप जब भी घी को तेल को तड़को लगावा तो सब्जी चिकी हवा बहुत बढ़िया बने। जब आप पहली तड़को लगा देवा तो बीच क्या घी तेल चुको है वो सब्जी का माँ रम जाए जो कि बाद में कई बार उखी पचे या फिर कई बार पचे कोनी नहीं बद हजमी हो जाए या फिर भी जो स्वाद है वो भी खराब हो जाए। तो आप तड़को लगाने से पहले ये बात को पूरा ध्यान रखना है कि सब्जी ने थोड़ी सी को उबालनी है और बीहू बाद का मापा भी ने तड़कनो है मसाला सा गए मिर्च का सा गए और जरूरत के हिसाब से अपने बिगमा पानी भी नाखनो है। और इनके अलावा थाने बतावा भाई लोगों के सब्जी ज्यादा देर तक भी अपने नी सिजानी चाहिए यानी नी पकानी चाहिए, क्योंकि इनमा जका मौजूद विटामिन सी है भी खत्म हो जाए। अपना कई भाई लोग है जहाँ साग बनावे जहाँ पालक है मेथी है बथु चुलाई सरसों का जो साग है वो भी बड़ो फायदेमंद है। भी हम बथुआ एक खरपतवार हुआ है लेकिन इगमा यानी बथुआ का माँ पोषक तत्व तो बड़ा कामगा हुआ है। बथुआ का साग है आप पालक है हरी मेथी है चुलाई है सरसों का साग है जो को मिला के रंधा तो इंगो जो को खाणो है इंगो जो को स्वाद है बड़ो लाजवाब हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बड़ो फायदेमंद हुआ है। तो टेम टेम पर आपने साग जरूर बना के खाने चाहिए और आजकल तो बड़ा होटलों का माँ बड़ो महंगो साग जो है वो मिले और आप बैठे जाके खावा तो अपना घर का माँ अपने खेत क्यारी का माँ साग जो है वो अपना दपाऊ को मिल जाए तो आप बिन घरे ले आगे बढ़िया साफ सुथरो धोगे बिना छितरिया और बनावा तो आपनों के खाणो भी हो जाए और अपना जो स्वास्थ्य है बिन भी कई तरह जगह पोषक तत्व है विटामिन है लवण जगह है भी मिल जाए। और चलता चलता थाना बता दें भाई लोगों के मिश्रित जो को अनाज है मिश्रित जो को भोजन है वो भी आपने कदी कदी करना चाहिए। मिश्रित भोजन की बात करें तो जी आप जहाँ कई चीजा ने मिला के आप भोजन तैयार करना जहाँ दाल है चावल की

0: खिचड़ी है या फिर दलियो है, इन आपा दूध का सागे भी खास का, नमकीन जो को है वो भी बना के खास का, इनके अलावा जहाँ गाजर को हलवो है, सूजी को जो को हलवो है, बिना भी आपा बना के खावा तो बहुत बड़ो स्वादिष्ट है। इनमें भी कई तरह की जगह पोषक तत्व तो है, बड़ा बढ़िया हुआ है, फायदेमंद है। तो आपा जब भी खाणो पीणो करा तो आ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा ताकि आपनों जो को स्वास्थ्य।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का आज भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। ये परियोजना प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित है। लगभग 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 36 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। प्रदेश के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों के नए नामों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में जयपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बलिदानी योद्धा मेजर विकास भांबू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज और अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अजमेर के कोटड़ा स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय और बारा के छबड़ा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए नामकरण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। श्रीगंगानगर में अंगदान महादान जागरूकता अभियान के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय में आज अंगदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और राजकीय सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर आम जन को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत अंगदान विषय पर पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताएं भी रखी गई। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अंगदान को मानव सेवा और जीवनदान का प्रभावी माध्यम बताया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना के तहत भरतपुर में 1311 पुराने वाहनों की पहचान की गई है। इनमें 1011 ट्रक और 300 बसें शामिल हैं। योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत वाहन मालिक स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराने वाहन का निस्तारण कर नया अनुपालक वाहन खरीदने पर विभिन्न वित्तीय रियायतों का लाभ ले सकेंगे। इनमें नए वाहन पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट और पुराने वाहन के प्रतिस्थापन पर 50% तक कर छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले 9 महीनों में विभिन्न राज्यों से 80 इनामी मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों पर कुल 21,28,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई राजस्थान सहित 8 राज्यों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई। इनमें कई ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जो वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि अब नार्को 25 सूची में शामिल बड़े तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने राउंड ऑफ 32 में हांगकांग की पुई यिन चोलेलो को सीधे गेमों में हराया। अनाहत का अगला मुकाबला मलेशिया की डॉयस ये सानली से होगा। आर्यवीर दीवान ने राउंड ऑफ 32 में दक्षिण अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को सीधे गेमों में आसानी से हराया और अब उनका अगला मुकाबला अमेरिका के यासिन शलाबी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी।

0: इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 928 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज महिला जगत में प्रस्तोता रहेंगी कृष्णा कुमारी शर्मा।

कॉटन सिटी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को कृष्णा का प्यार भरा उमंग भरा नमस्कार। सखियों, संगीत कण कण में बसा है। जब अमृत के रस भरे गाने हम सुनते हैं तो मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं। आज का दिन समर्पित है महान पार्श्व गायक मुकेश को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उनकी मधुर आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है तो सुकून मिलता है। तो आज हम उन्हीं की आवाज में चंद गानों का आनंद लेंगे। उस बेमिसाल गायक की आवाज में बहुत से गीत हम आपको सुनवाएंगे। और कहते हैं कि मन और बादल और मौसम एक जैसे होते हैं, जब अपनी मर्जी होती है वैसा ही वे लोग करते हैं। तो इनकी आवाज में हम आपको एक खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं, और शायद ये गीत सुनकर मन और मौसम क्या पता बदल जाए।

सखियों, सिलसिला बातों का फिर जारी करते हैं। बहनों, गायक मुकेश ने अपना करियर 1941 में फिल्म निर्दोष से शुरू किया। इस फिल्म में बतौर अभिनेता के रूप में आपने काम किया। 1945 में आई फिल्म पहली नज़र का गीत दिल जलता है तो जलने दे अपनी आपकी आवाज़ में जादू से कम नहीं था। 1945 से 1950 तक कई सुपरहिट फिल्मों में आपने गाने दिए। अंदाज, बरसात और आग, चेहरा, दिल का खिलौना, दो दिल, तोहफा, मेला, लेख और बहुत सी और भी फिल्में हैं जिनमें आपने गीत दिए हैं। आज भी इन गीतों को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे कानों में मिश्र से खुल गई है। तो चलिए एक और खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज़ में, फिल्म ओपेरा हाउस से।

सखियों, संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है। बिन संगीत सब कुछ सूना है। गायन हो चाहे वादन, दोनों की ध्वनियाँ मधुर हैं। जीवन में चिंता, तनाव, इन सबको दूर करने के लिए संगीत ही अच्छा माध्यम है। और राजस्थानी संगीत तो सुरों का गढ़ है। अनेक महान गायक और वाद्य कला में निपुण कलाकार यहाँ जन्मे हैं। राजस्थान की सुरीली धरती पर ही जन्मे एक महान वाद्य कलाकार तगाराम भील, जो प्राचीन वाद्य यंत्र अलगोजस में निपुण है। देश विदेश में इनके वाद्य यंत्र बजाने की कला से सभी परिचित हैं। आप जैसलमेर से हैं और 2026 में इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपने अलगोजा की अनूठी धुनों से 35 से अधिक देशों में अपना नाम रोशन किया है। तो करेंगे बातें और भी, लेकिन इस गीत के बाद।

सखियों, अगर हम चाहें तो सच्ची लगन साधना से लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। 1981 में पहली बार आपको अलगोजा बजाने का मौका मिला।

आप राजस्थान की लोक कला और संस्कृति के सच्चे साधक हैं। आपने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी लोक संगीत की साधना को जारी रखा। आपने संघर्ष किया और मंजिल को पाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहचान बनाई। आपने राजस्थान की थार नगरी की मिट्टी में बसे लोक संगीत को जिंदा रखा। आपकी खूबियां बहुत अनूठी हैं। करेंगे चर्चा और भी इस गीत के बाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, गीत से पहले हमारी बात हो रही थी पद्मश्री से सम्मानित तगाराम भील के बारे में। आपने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और मरुधरा के

पारंपरिक संगीत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आपने लोकगीतों, मांड गायकी और रेगिस्तानी संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया। तगाराम भील आज की नई पीढ़ी को भी लोकवाद्य और लोक धुनों की शिक्षा देकर इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। संगीत प्रेमियों के लिए आप एक मिसाल हैं। हम चाहेंगे आपसे प्रेरित होकर राजस्थान की मिट्टी से कुछ और सुरीले कलाकार यूं ही निकलें।

सखियों, आज के इस आधुनिक दौर में सभी व्यस्त हैं। कभी कभी हम अपने जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप के लिए हमारे पास समय नहीं है? इस उम्र में वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इससे तनाव चिंता उन्हें घेर लेती है और अनेक बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। ये अकेलापन उन्हें 50 की उम्र में भी 80 साल का दिखाता है। जिंदगी चल रही है बस, और साथ साथ चल रही है दवाइयाँ। ऐसा लगता है कि जीवन बिल्कुल नीरस हो गया है। इसका एक और भी कारण है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं। ये फ़ोन हमें निराशा देता है, तनाव देता है, अकेलापन। सखियों, रोग है लेकिन उसका इलाज भी है, लेकिन अकेलेपन का इलाज है केवल एक, कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, अपने परिवार को अकेला ना छोड़ें। बस यही एक कारण है जहां बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो सबके साथ मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं।

सखियों, कुछ अकेलेपन के और भी कारण हैं, जैसे पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ता है, या शादी के बाद वो बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो माँ बाप एक लंबे समय तक अकेलापन भुगतते हैं। ये मानसिक रोगी से शारीरिक रोगी बन जाते हैं। अकेलेपन से तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, पागलों जैसी हरकतें करना, जोर जोर से चिल्लाना, अकेले रहने की वजह से सिगरेट, शराब जैसे नशे भी करने लगते हैं। धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अकेलेपन से ना तो भूख लगती है, ना प्यास, और ना ही किसी से बात करने का मन करता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है और सामाजिक रिश्तों में बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वे टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो बस उन्हें दूर करना है, क्या केवल अकेलापन, और फिर जिंदगी होगी बिल्कुल खुशहाल।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

या वो कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं तो व्यस्त है और दूर रहते हैं तो बच्चों को अकेलापन भुगतना पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, अकेलेपन से अधिक भावुक होकर गलत संगति में पड़ जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है या नशे की लत लग जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, फिर समाज से और रिश्तों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, तो बच्चों को अकेला छोड़ने की भूल कभी ना करें। जहाँ तक हो सके अपने परिवार के साथ मिल कर रहें ताकि अकेलापन कभी ना हो।

सखियों, इस सुरीले राजस्थान में सुरों के साथ साथ मेहमान नवाजी भी बहुत जोरदार होती है। हमारे राजस्थान के लोग स्वस्थ भी हैं क्योंकि उनके भोजन में गुण ताकत दोनों हैं। एक समय था जब लोग शारीरिक काम अधिक करते थे, आजकल कम, क्योंकि पहले जवार बाजरा जैसे पौष्टिक धान उनके खाने में शामिल था। जवार बाजरा की रोटी, कुरकुरी, टिक्की, जो पौष्टिकता से भरपूर होती है, और खिचड़ी की तो आपने खाई ही होगी, जो बिल्कुल फाइबर से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है, पाचन को दुरुस्त रखती है। और मोट बाजरे की खिचड़ी बनाना भी बहुत आसान है। आधे घंटे घंटे बाजरे को भिगो दीजिए, फिर अच्छी तरह से इसे बारीक कूट कर फिर उसमें मोट की दाल बराबर मात्रा में मिलाएं, स्वादानुसार नमक डालें और मिट्टी की हांडी में पानी डालकर उसे घंटों पकाएं। मध्यम आंच पर उसकी खुशबू के क्या कहने। धीरे धीरे जब कोई व्यंजन बनता है तो उसका स्वाद ही निराला होता है, और फिर घी डालकर आप उसे खाएं तो आप खाते ही रह जाएंगे। और भी व्यंजन हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

सखियों, हम क्षमा चाहते हैं, किसी वजह से कार्यक्रम फिर जारी है। बाजरे की खिचड़ी के साथ साथ राबड़ी भी आपने खाई होगी, जो मोठ और बाजरे के आटे से बनाई जाती है। इसे गर्मियों में तो हम ठंडा करके खाते हैं और सर्दियों में गर्म, और ये जुखाम और सर्दी के लिए बहुत अच्छी होती है। राजस्थान के थार में घी के आटे में भूनकर गुड़ राबड़ी भी बनाई जाती है, जो जुखाम, सर्दी और बुखार के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये बिल्कुल पतली होती है और पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बातें और भी करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

सखियों, जवार बाजरे का इंस्टेंट डोसा क्या आपने कभी बनाया है? ये नाश्ता ग्लूटेन फ्री होता है और बहुत ही कुरकुरा नाश्ता है और बनाना भी आसान है। आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें एक कटोरी जवार का आटा, एक कटोरी बाजरे का आटा और दही, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और ज़ीरा और स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी मिलाकर इस बैटर को तैयार कर लें। इस घोल को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। फिर पैन पर घी लगाकर इस बैटर को फैला दें।

और 2 मिनट तक एक तरफ से सेकें और फिर दूसरी तरफ से सेकें। बस चटनी और सॉस के साथ गर्मा गर्म आपका डोसा तैयार है। लीजिए आनंद और चलिए सुन लेते हैं एक और गीत।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Stalemate continues in Parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर

0: बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान

0: क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना जिगरी दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हाथी मेरे साथी फिल्म से किशोर कुमार और लता की आवाज़ें, आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभिमान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज, DRM 909 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

0: श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और अब वक्त है उर्दू सर्विस का।
1: आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है।

सामिन आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, जिनमें 3:30 हम पेश करेंगे जनाब प्रेम पाठक का तहरीर करदा ड्रामा ऊंचाइयों की तय। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामीन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। आबदोज शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आज़ादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। फ्रांस में 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात हमले किए हैं। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अली फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर INS मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क में ही जंगी जहाज तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत

के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आईएनएस मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा। बीजेपी ने आज कहा है कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कयादत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की क्यादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आज़ादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहिया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंज़र की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौक़ों पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मीटिंग में इक्तिसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निपटने के तौर तरीकों पर खासतौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर व खौज किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूपियो से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी शराकत दारी के लिए तरजीही शोबे हैं। इनमें मसनूई जहानत, अहम नौयत की मादनियात, दिफा, तवानाई, महसूलात और तजारत भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग से बातचीत की। जनाब जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे के बाद के नतीजे पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरकी एशिया छोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की ज़रूरत को उजागर किया और साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमनो सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ही तआवुन पर मबनी और पायदार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि इस तरह के दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कसीर कुतबी एशिया और कसीर कुतबी दुनिया में बेशबहा रोल अदा कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स 2026 की सदारत के एक हिस्से के तौर पर भारत ने कल चंडीगढ़ में रिवायती कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग की मेज़बानी की। ये मीटिंग सेहत से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों के उस चार रोज़ा प्रोग्राम का एक हिस्सा थी जिसका अहतमाम सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत और आयुष की वजारत ने मुश्तरका तौर पर किया। मीटिंग से सबूतों पर मबनी अद्वियात के रिवायती निज़ाम को फ़रोग देने, इदारा जाती साझेदारी को मुस्तहकम करने और अफसाने सेहत के पायदार और मुस्तहकम निज़ाम में तआवुन देने के सिलसिले में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक में इजाफा करने में मदद मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में मेघालय के वजीर आला कोनार्ड के संगमा से बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने बताया कि उन्होंने मेघालय के हवाई रबते को मुस्तहकम करने पर मुफीद तबादला ख्याल किया है। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकूट हिल्स में खराब मौसम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज मुसलसल चौथे दिन भी मुअत्तल है। हुक्काम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सब्र से काम लें और हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। कटरा में महसूर यात्रियों को श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से मुफ्त लंगर, तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनके ठहरने का भी इंतजाम किया गया है।

फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बास रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून सासरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। इस बिल के तहत तलबा पर यह बंदिश भी आयद की गई है कि वो स्कूलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। इस तरह फ्रांस यूरोपीय यूनियन में ऐसा पहला मुल्क है जिसने सोशल मीडिया पर इस तरह की बंदिश आयद की है, क्योंकि दुनिया भर में ये तशवीश पाई जा रही है कि बच्चों पर

0: इस तरह फ्रांस यूरोपीय यूनियन में ऐसा पहला मुल्क है जिसने सोशल मीडिया पर इस तरह की बंदिश आयद की है, क्योंकि दुनिया भर में ये तशवीश पाई जा रही है कि बच्चों पर डिजिटल मवाद के नुकसानदेह असरात मुरतब हो रहे हैं। इस बंदिश में ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, तालीमी और साइंसी लुगात शामिल नहीं हैं। अमरीकी मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ मुसलसल 11वीं रात फजाई हमले किए हैं ताकि अबनए हुरमुज में कमर्शियल जहाज़ों को धमकाने की ईरान की सलाहियत को कम किया जा सके। अमरीकी फौज ने फौजी कार्रवाई के मरकजों, समंदरी तनसीबात, हवाई जहाज़ों के रुकने की जगहों, ड्रोन को जखीरा करने की जखीरों और फौजी लॉजिस्टिक्स से मुतालिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। इससे पहले ईरान ने 29 से ज़्यादा कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए थे जो पिछले 3 महीनों में अबनए हुरमुज से गुजरे हैं। मगरबी नेपाल में आज सुबह सवेरे जलजले का झटका महसूस किया गया जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.2 बताई जाती है। इस जलजले का मरकज पाझंग जिले में कोट देवाल के पास था। नवाही अजला में भी जलजला महसूस किया गया। फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। गुज़श्ता हफ्ते भी मगरबी नेपाल में लुम्बिनी सूबे में मशरकी जिले में जलजला आया था। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के खिलाड़ी युशी तानाका का सामना करेंगे और ये खेल चीन के शहर चांगजू में हो रहे हैं। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इस दौरान मर्दों के डबल्स में 32वें दौर में भारत की जोड़ी एम आर अर्जुन और हरिहरन का मुकाबला चीन की जोड़ी से होगा। भारत की अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान स्क्वॉश की आलमी जूनियर इन्फिरादी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आला दर्जे के खिलाड़ी अनाहत ने सीधे सेटों में हांगकांग की खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आर्यवीर दीवान ने जनूबी अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को आसानी से हरा दिया और अगले दौर में अब उनका मुकाबला अमेरिका के खिलाड़ी यासीन शालाबी से होगा। इसी दौरान भारत के गुरवीर सिंह, यूशा नफीस, सानवी कालंकी, रुद्र सिंह और अनिका दुबे आला दर्जे के अपने हरीफों से हार गए। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अब्दुश शिकन आईएनएस मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोड मुल्कों के वज़राए खारिजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। फ्रांस में 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात हमले किए हैं और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के सामईन जो नगमे हम ने मुंतखब किए हैं वो मुकेश की आवाज़ में, चूँकि आज उनका यौम पैदाइश है। मुकेश आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी यहीं पर हासिल की। एक मौसीकी के उस्ताद उनकी बहन को तालीम देने के लिए घर पर आया करते थे। उन्हें मुकेश के अंदर एक गुलकार और एक फनकार नज़र आया। उन्होंने उन पर खसूसी तवज्जो दी और फिर उनके एक दूर के रिश्तेदार मोती लाल जी जो बम्बई में फिल्मों से वाबस्ता थे उनकी नज़र मुकेश पर पड़ी, उनको बम्बई ले गए। वहाँ जाकर जो सबसे पहला काम उन्होंने किया उनकी मौसीकी की तालीम पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से उनको दिलाई। इसी दौरान एक फिल्म 1941 में उन्हें एक एक्टिंग करने का मौका मिला जिसमें एक्टिंग भी थी और मतलब नगमे को गाना भी था, गुलकारी भी थी। एक तरह से कहा जाए तो उनका जो पहला गाना था जो एज एन एक्टर था वो था दिल ही बुझा हुआ हो, और उसके बाद जो पहला नगमा उन्होंने गाया यानी कि जिसमें सिर्फ उनकी गुलकारी का आगाज और बाजाबता वो था दिल जलता है, फिल्म पहली तारीख का। बहरहाल फिर मुकेश को इस तरह से नगमा मिलने लगे और उन्होंने गुलकारी को बाकायदा अपना मिशन बना लिया और एक तरह से अमली ज़िंदगी में उन्होंने गुलकारी को ही अपना मकसद रखा।

अनीता फिल्म का नाम आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में, मौसीकार थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए, सुनिए, दिल ने फिर याद किया, नगमनगार सील रावल, मौसीकार सोनिक ओमी, आवाज एक बार फिर।

सामिन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। आज का यह प्रोग्राम खराज अकीदत था, मारूफ गुलूकार मुकेश के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और DD फिर डिश पर। पेश खिदमत जनाब प्रेम पाठक का तहरीर का ड्रामा ऊंचाइयों की तह।

0: चले कहाँ गायब हो जाता है।
1: जी मैडम, आपने मुझे बुलाया।
0: मगर तुम थे कहाँ? तुम्हें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती?
1: जी, मैं तो वहां बैठा था बाहर।
0: अच्छा अच्छा, अब जरा सफाई पेश मत करो। ये लो चाबी, उस फाइल को निकालकर जल्दी से लाओ मेरे पास।
1: लीजिए मैडम।
0: ठीक है, रख दो यहीं पर। और सुनो,
1: जी
0: कैंटीन जाकर एक सेट चाय के लिए कह रहा हूं।
1: बहुत अच्छे।
0: हेलो, रमा बोल रही हूँ, कहिए। अच्छा अच्छा, वर्मा साहब हैं, कहिए कैसे याद किया। जी जी जी जी हाँ, सब तैयार है, अभी धनीराम के हाथ भिजवा देती हूँ। सुनो धनीराम
1: जी,
0: जल्दी से हाजिरी के तमाम रजिस्टर ले आओ मेरे पास। और सुनो, आते वक्त शर्मा साहब को भी साथ लेते आना।
1: बहुत अच्छा मैडम। शर्मा साहब, आपको मैडम याद कर रही है।
2: अभी चलता हूँ भाई।
3: अरे भाई शर्मा, क्या सोच रहे हो यार, जल्दी चले जाओ वरना बॉस का नजला पूरे दफ्तर पर आ गिरेगा।
2: देखो कपूर, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने काम से काम रखा कर।
3: अरे भैया, खफा क्यों होते हो? इस दफ्तर का मक्खी मच्छर तक जानता है कि जिस दिन मैडम गुस्से में होती हैं, उस दिन।
2: इस मशवरे के लिए शुक्रिया, मगर एक बात सुन लो, मुझे दूसरे लोगों की तरह किसी की चापलूसी करना कतई पसंद नहीं है। मैं तो काम करने में यकीन रखता हूँ, खाली बैठे बैठे दफ्तर की कुर्सियां नहीं तोड़ा करता।
3: देख लो, मगर हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, इसीलिए ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि पानी में रहकर मगर मच्छ से बैर मोल लेना खतरे से खाली नहीं हुआ करता। बेचारा।
2: मैडम, आपने मुझे
0: ओफो शर्मा, हजार बार समझा दिया कि मुझे मैडम ही सर कहा करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं खुद को सर कहलवाना ज्यादा पसंद करती हूँ।
2: सॉरी सॉरी मैडम, नो सॉरी सर।
0: मिस्टर शर्मा,
2: इस
0: ये कोटेशंस तुमने ही तैयार की है ना?
2: ये सर।
0: बहुत खूब, तुम्हारे काम को देखकर कोई भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता।
2: मैं समझा नहीं सर।
0: जरा एक नजर इन कोटेशंस पे डालो, खुद बखुद समझ जाओगे।
2: जी।
0: ये कैसा तरीका है तुम्हारे काम करने का? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम अपना मुस्तकबिल इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हो।
2: सॉरी सॉरी सर, मैं खुद समझ नहीं सका कि ऐसा मुझसे कैसे हुआ। मैं इसे दोबारा तैयार करना।
0: वो तो तुम करोगे ही, तुम्हें करना भी पड़ेगा, लेकिन वक्त की अपनी एक अहमियत भी हुआ करती है। जो कोटेशंस तुम्हें दो रोज पहले तैयार कर लेनी चाहिए थी, वो अभी तक नामुकम्मल है। उधर डायरेक्टर साहब के फोन पर फोन आ रहे हैं।
2: सॉरी सर, मैं अभी ठीक किए लेता हूँ।
0: अच्छा, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस दफ्तर में। धनीराम।
1: जी मैडम।
0: तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑर्डर सेक्शन से कुछ कागजात लेने भेजा था।
1: मैडम, मुझे तो आपने खैर, अभी जाता हूँ मैडम। मैडम,
0: अरे तुम फिर लौट आए?
1: मैडम, ऑडिटर साहब खुद ही इधर आ रहे हैं।
0: ठीक है।
2: अरे रमा, यहाँ
0: ये मैं क्या देख रही हूँ? जगदीश और इस दफ्तर में मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है?
1: मैडम, ऑडिटर साहब आ गए हैं, आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। आप जब छुट्टी पर थी तभी साहब ने ये दफ्तर ज्वाइन किया था।
0: धनीराम, मैंने तुमसे तारुफ कराने को नहीं कहा, अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, साहब से फाइलें लेकर मेरी गाड़ी में रख दो, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ।
1: मैडम, ना जाने मैडम को भी क्या हो जाता है, पल भर में तोला पल भर में माशा, मैं तो समझ ही नहीं पाया आज तक।
4: काश तुम जान पाती रमा कि अपने आप से टूट जाने की तकलीफ कितनी नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती है। बगैर सोचे समझे उठाए गए कदम का नतीजा एक न एक दिन यही होता है।

0: मां, रमा बेटी, आज दफ्तर नहीं जाना है क्या? अरे नौ तो कब के बज चुके, धनी राम जीप लेकर आता ही होगा।
1: काकी रहने भी दो, नौ तो हर रोज बजते हैं और बजते रहे।
0: हाँ, वो तो मैं भी जानू हूँ। कल तो कह रही थी कि जल्दी उठा देना, किसी मीटिंग में जाना है, मगर आज उठने का नाम ही नहीं ले रही।
1: कल और आज में बहुत फर्क होता है काकी।
0: कह तो तू ठीक रही है बेटी।
1: इसीलिए तो कहती हूँ काकी, कल गंगा की तरह पवित्र और मुकद्दस था, और आज आज मेरे लिए वही गंगा गर्म पानी के चश्मे की मानिंद है। दिल और दिमाग में जंग शुरू हो चुकी है, दिल दिमाग से और दिमाग दिल से दस्तों गरीबा है।
0: तू तो न जाने क्या क्या बोलती रहती है हर वक्त, तेरी बातें मेरे समझ में नहीं आती।
1: तुम्हारी समझ में आएंगी भी नहीं काकी। कल मेरे पांव के नीचे ठोस जमीन थी, और आज उसकी जगह फिसलन है। मैं जितना जमीन पर अपना पांव जमाने की कोशिश करती हूँ, उतनी तेजी से फिसल कर गिर पड़ती हूँ।
0: कैसी बातें कर रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
1: मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या होता जा रहा है। मेरे अंदर एक अजीब हलचल है, एक तूफान है, जिसमें खुद भी नहीं समझ पा रही।
0: कल जब से तू दफ्तर से आई है, इसी तरह की बेतुकी बातें कर रही है। न तो तूने ढंग से खाया है, न पिया है, आखिर बात क्या है? कुछ मालूम भी तो हो कि हुआ क्या है?
1: ये क्यों नहीं पूछती काकी कि क्या नहीं हुआ?
0: हेलो, वो धनी राम भी आ गया जीप लेकर, और तू तो अभी
1: उससे
0: तक...
1: कह दो काकी, मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
0: और सुनो,
1: ये तमाम फाइलें भी उसे दे दो।
0: ठीक है, मुझे क्या, पहले देती हूँ। धनी राम, ये फाइलें संभाल कर दफ्तर ले जाना, मैडम आज दफ्तर नहीं जाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
2: जी जी बहुत अच्छा।
0: अब बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो?
1: हाँ, सब कुछ बताऊंगी काकी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? मेरी सुनने वाला और है कौन? काकी, तुम्हें सुनकर भी ताज्जुब होगा कि जिस दर्द से मैं तड़प रही हूं, वो दर्द खुद मेरा पैदा किया हुआ है। ये
0: क्या कह रही है तू?
1: मैं ठीक कह रही हूँ। समझ में नहीं आता कि अब मेरी जिंदगी का मकसद क्या रह गया है। कभी अपनी हालत पर रोने को जी चाहता है, और कभी जी भर कर हंसने को। मगर मैं जानती हूँ कि मैं रो भी नहीं सकूंगी, और हंसना तो मुमकिन ही नहीं मेरे लिए। मुझे तो शायद अब हमेशा के लिए इसी दलदल में फंसे रहना होगा।
0: रमा,
1: मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, किस जानिब ले जा रहा है ये अंधेरा मुझे। मैंने तो ऐसे खौफनाक अंधेरों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, फिर ये मेरी तकदीर क्यों बन गए? काकी, कभी कभी लगता है जैसे मैं हजारों मील का लंबा सफर तय करने के बाद आज भी वही खड़ी हूँ जहां से चली थी।
0: ये तेरा वहम है बेटी, ना समझी है?
1: नहीं काकी, ये हकीकत है, हकीकत। मेरे पांव के तलवे धुआं देने लगे हैं, घुटने चटकने लगे हैं, मेरे चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी ये नहीं समझ पा रही कि वो रास्ते कहाँ छूट गए, क्यों मैं अपनी मंजिल से भटक गई, क्या गुनाह किया था मैंने आखिर।
0: बेटी, जो छूट गया उसे भूल क्यों नहीं?
1: कैसे भूल जाऊं काकी, सांसें तो आज भी वहीं अटकी पड़ी हैं। आज सोचती हूँ कि उस वक्त कैसी कैसी बेवकूफियां की थी मैंने।

0: रात अब जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी है। जानती हो काकी, कभी कभी तो जी चाहता है कि कोई आगे बढ़कर मुझे अपने आगोश में ले ले, मुझे सहारा दे। मगर
1: बेटी, मैं तेरा दर्द बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन बेटी तुझे फैसला करने के लिए किसी ने मजबूर भी तो नहीं किया था
0: काकी।
1: हाँ बेटी, तू मुझे कुछ समझती है ना, इसीलिए ये सब कहा मैंने।
0: काकी, उन यादों को फिर से ताजा मत करो काकी।
1: पगली, उन यादों को मैं कब ताजा कर रही हूँ, तू तो खुद उन यादों से लिपटी हुई है। न जाने तुझे क्या होता जा रहा है, कभी किसी बात को ठुकरा देती है और कभी उसी बात को जायज कहकर उसी को करने की जिद करने लगती है। बेटी, खुद सरी और खुद गर्जी का यही अंजाम होता है।
0: काकी, ये क्या कह रही हो काकी?
1: बेटी, खफा क्यों होती है? बचपन से आज तक तुझे गोद में खिलाया है ना, उसी रिश्ते से कह रही हूँ। लेकिन अगर तू सच्चाई को कबूल करने से इनकार करती है तो कौन कहता है कि तू मेरी बात सुन। लेकिन लेकिन बेटी, मेरे चुप रहने से क्या ये कहानी खत्म हो जाएगी?
0: कहानी कभी खत्म हुआ करती है क्या? ये कहानी अब एक नए उन्वान से आगे बढ़ेगी, जिसके साथ मेरा कोई सरोकार नहीं होगा। मगर इस कहानी के किरदार और माहौल दोनों मुझे हर लम्हा परेशान करते रहेंगे। मेरे लिए ऐसे खौफनाक हालात को सहना कितना मुश्किल होगा काकी। जगदीश ठीक ही कहता था।
2: मुबारक रमा। कहो, नया दफ्तर और पहले दिन की अफसरी कैसे लगी? कुछ हमें भी तो पता चले।
0: मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रही पहले दिन की बात, तो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं।
2: अच्छा?
0: सच जगदीश, कहीं एक अफसर बनकर काम करना और कहीं मातहत बनकर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं, जिन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बयान करना आसान नहीं।
2: हाँ, वो तो तुम ठीक ही कहती हो, मगर तुम इतनी जल्दी घर क्यों चली आई? मैंने तो तुम्हें दफ्तर से पिकअप करने को कहा था।
0: बस यूं ही, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं चाय बनाकर आती हूँ।
2: अजी छोड़िए मैडम, अब तो आप एक आला अफसर हैं, आप बैठिए, आखिर ये खादिम किस्मत की दवा है।
0: देखो जगदीश, ऐसी बातें करोगे ना तो मैं।
2: अच्छा अच्छा, ये तेवर।
0: ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? दरवाजा खुला हुआ है, कहीं काकी।
2: वो ये काकी बीच में घास से टपक पड़ी। अच्छा, तो ये बात थी। काकी का बहाना करके मैडम किचन में चली गई।
0: लीजिए, ये रही चाय और ये जायकेदार कचौड़िया।
2: देरी, वाह, आज तो मजा आ गया। अरे ये सब क्या, ये नए पर्दे, नया सोफा, सब कुछ बदला बदला लगता है आजकल।
0: ये सब कुछ मैंने ही, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ रद्द बदल तो करना ही चाहिए।
2: वो तो ठीक है रमा, मगर
0: देखो जगदीश, अब अगर मगर कुछ नहीं, अब तक ये घर जैसे तुमने चाहा वैसे चला, और अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही चलेगा। कब से तमन्ना थी कि ये खूबसूरत घर हो, जिसमें आराम और आसाइश की हर चीज हो, नौकर चाकर हो, दफ्तर आने जाने के लिए स्टाफ कार हो। आज मेरी वो दैरीन आरज़ू पूरी हुई है, इसलिए तो कर रही हूँ ये सब।
2: देखो रमा, एक हद तक तो ख्वाहिशात और तमन्नाओं का होना ठीक है, मगर हद से आगे बढ़ना।
0: तुम्हारा फलसफा मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, यही हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। खैर, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे?
2: मैंने पहले कभी बुरा माना है तुम्हारी बात का जो आज? अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो?
0: अगर तुम अपनी साइकिल को खैर बात कहकर एक नया स्कूटर खरीद लो अपने लिए तो कैसा रहेगा?
2: मगर इसकी क्या जरूरत है, मेरा काम तो ठीक चल रहा है।
0: तो समझते क्यों नहीं, कहीं आना जाना हो तो क्या अच्छी लगेगी ये फटीचर साइकिल?
2: तो क्या आज से तुम ये समझने लगे हो कि स्कूटर से आदमी का

0: बा मर जाता है।
1: ओ, दलील देना तो कोई तुमसे सीखे। तुमने आज तक कभी मेरी बात मानी है? जॉब मेहनत करके कंप्लीट किया होता तो आज तुम भी।
0: देखो रमा, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि आजकल मुलाजमतें काबिलियत की बुनियाद पर नहीं। खैर छोड़ो छोड़ो इन बातों को, जो होना था सो हो गया। फिर तुम या मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है?
1: फर्क तो पड़ता है।
0: ये सब दकियानूसी बातें हैं। मर्द के ऊंचे ओहदे से अगर औरत का सर ऊंचा होता है तो औरत के आला ओहदे से मर्द को भी फख्र होना चाहिए। इसीलिए आज मैंने अपने दफ्तर में तुम्हारे ऑफिसर बनने की खुशी में एक पार्टी दी थी।
1: ये तो ठीक है जगदीश, मगर सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। प्लीज एक बार फिर कहती हूँ, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो।
0: फिर वही बात,
1: आखिर उसने बुराई भी क्या है? फिर इतनी डिग्रियां जमा करने का क्या फायदा? इंसान को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए।
0: देखो रमा, मैं तमाम पहलुओं पर सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद मैं एक ऑफिसर बनने के काबिल हूं ही नहीं।
1: यही तो मैं भी कहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर तुम्हें कमी किस बात की है?
0: मैं खुद को जानता हूं, पैसे के लिए हाय तौबा करना मेरी फितरत से मेल नहीं खाता। जो मुकद्दर में होता है वो मिल ही जाता है। फिर हमें मारे मारे फिरने की जरूरत ही क्या है? ये काकी कहाँ है?
1: कुछ लेने बाजार भेजा है, रात के खाने पर मैंने कुछ लोगों को बुलाया है।
0: अरे वाह, मगर तुमने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया।
1: मैं सरप्राइज देना चाहती थी इसीलिए तो।
2: जी सामान ले आए हैं।
1: ठीक है काकी, तुम पनीर के सालन के लिए मसाला तैयार करो, मैं आती हूँ। और हाँ, चने भी उबालने के लिए रख देना।
2: अच्छा,
0: किस किस को खाने पर बुलाया है? कुछ हमें भी तो पता चले।
1: कोई खास नहीं, कुछ दफ्तर के अफसर हैं जिनसे अभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, और इसके अलावा पड़ोस के वाधवानी और कुलकर्णी हैं। मैंने मिस्टर मिसेस सिन्हा को भी कह दिया।
0: मगर तुम तो मिसेस सिन्हा से।
1: तुम भी एक ही हो जगदीश, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? आज तो जलकर खाक हो जाएगी मिसेस सिन्हा। अपने आदमी के गजेट ऑफिसर बनने की बड़ी ढींगी हाका करती थी।
0: अरे छोड़ो, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते, अपनी अपनी आदत होती है। सबको बुलाया है तो मिस्टर एंड मिसेस चंद्रन को क्यों नहीं बुलाया? वो तो हमारे नजदीक तरीन पड़ोसी हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे क्या?
1: बुरा माने भी तो मेरी बला से। जानते हो आज क्या कह रही थी मिसेस चंद्रन?
0: क्या?
1: यही, आप अपने हस्बैंड को भी कोई कॉम्पिटिशन पास करने के लिए कहिए ना, मदद के लिए मिस्टर चंद्रन तैयार है। मुझे तो बहुत बुरा लगा।
0: देखो रमा, तुम लोगों की ऐसी बातों पर कोई तवज्जो मत दिया करो, लोग तो कुछ ना कुछ।
1: वो तो ठीक है जगदीश, मगर उन्हें भी हमारे जज्बात को इस तरह ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते मैं तो तंग आ गई।
2: रमा बेटी, पनीर के सालन का मसाला तैयार है।
1: आती हूँ काकी। देखो जगदीश, जल्दी से कोई बढ़िया सा सूट पहन लो, वो लोग आते ही होंगे, समझ गए ना?
0: ओके।

0: भी है भाई, ओ दफ्तर और मियाँ बेचारा। तो मियाँ भी कुछ कर क्यों नहीं लेता, इतने कंपटीशन होते भाई। कुछ नहीं कर सकता तो नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस ही कर ले।
1: बीवी रोप क्यों ना जमाए हो।

0: रमा जी कहाँ हो भाई? जरा जल्दी से खाना लगवा दो, आज तो बहुत जोर से भूख लगी है। रमा, अरे कहाँ हो तुम?
1: रमा बीबी जी तो अभी तक दफ्तर से ही नहीं आई।
0: क्या कुछ कहकर गई थी क्या?
1: कहकर तो कुछ नहीं गई थी, मगर कुछ देर पहले फोन जरूर आया था, आपके और बाबा के बारे में पूछ रही थी।
0: बाबा सो गया क्या?
1: हाँ, कुछ ही देर पहले रोता रोता सोया है बेचारा। आपके लिए खाना लगा दूं?
0: नहीं रहने दो, अभी भूख नहीं है।
1: अभी तो कह रहे थे भूख लगी है, और अब
0: क्या फर्क पड़ता है काकी?

0: जहाँ इतनी देर हो गई कुछ देर और सही, रमा आ जाए तो।
1: ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बाबा उठ गया है।
0: समझ में नहीं आता आखिर रमा को क्या होता जा रहा है, ना घर की फिक्र है ना बच्चे की।
2: क्या बात है चाची, बाबा क्यों रोज आ रहा है?
1: क्या बताऊं, मैं सुबह से यही हाल है इसका, सुबह से दूध भी नहीं पिया।
2: लाओ इसे मेरे पास लाओ, मैं चुप कराता हूँ। अरे ले ले, हमारा बेटा क्यों रो रहा है? अरे मम्मी अभी आ जाएगी, चुप।
1: लाइए लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, ये काम आपके बस का नहीं है। आओ अच्छा बेटी, आ जा आ जा। ओ क्यों परेशान कर रहा है, आएगी अभी आ जाएगी। वो सामने तेरी मम्मी आ रही है। वो आ गई।
3: क्या बात है काकी? बाबा इतना जोर से क्यों रो रहा था? दूर से इसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी।
0: शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया, कहाँ थी अब तक?
3: मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया है, आज एक फंक्शन था इसी वजह से कुछ देर हो गई।
0: क्या क्या कह रही हो, तुमने मुझसे तो कोई बात नहीं की इस बारे में? क्या ये सब
3: आपसे क्या बात करती, आपको तो किसी चीज में दिलचस्पी है ही नहीं। सभी अफसर क्लब जाते हैं, इसलिए मैंने भी।
0: ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए वही करो, मगर मगर इसे तो संभालो, वो तो मतलब बुरा हाल हो गया है।
3: जरा साड़ी चेंज कर लो, अभी लेती हूँ।
0: साड़ी बाद में भी बदली जा सकती है, पहले बच्चों को संभालो।
3: ओफो, एक दिन आपने बच्चे को क्या संभालिया कि बस मेरे लिए आफत ही खड़ी कर दी। जब मियाँ बीवी दोनों कमाते हो तो दोनों को मिलकर ये भी काम करना चाहिए, इसे तो मैं ही।
0: आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा खाबिद हूँ नौकर नहीं। घर आने पर बच्चे को संभालूं, तुम्हारा इंतजार करूं, बच्चे को दूध पिलाऊं, बस यही काम रह गया मेरे लिए।
3: नहीं साहब, नौकर आप नहीं, नौकरानी तो मैं हूँ। तब तक से घर लौट कर आपकी खिदमत भी करूँ और ऊपर से आपकी जली कटी भी सुनूं।
0: देखो रमा, मैं ये सब सुनने का आदी नहीं हूँ। जब से तुम्हें अफसरी का तमगा मिला है तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए। रही नौकरी की बात तो वो तुम अपनी खुशी से कर रही हो, उसके लिए मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया।
3: हाजी रहने दीजिए, ये सब कहने की बातें हैं। नौकरी छोड़ दूं तो दो दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाए जनाब को। हाँ, सारे ठाट बाट धरे के धरे रह जाए। एक एलडीसी की हैसियत ही क्या होती है।
0: रमा, तुम हद से ज्यादा।
3: सच्चाई कड़वी होती है जगदीश, अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो आज मेरी हंसी न उड़वाते इस तरह, मुझे इस तरह सब सुनने को न मिलता। ये हालात खुद तुम्हारे पैदा किए हुए हैं।
0: नहीं, ये हालात मैंने नहीं तुमने पैदा किए हैं, अपने लिए ही नहीं पूरे घर के लिए।
3: नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम क्या जानो, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के कैसे कैसे कमेंट सुनने पड़ते हैं, चार लोगों में कैसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे अपनी भी तो ख्वाहिशें हैं, मैं भी सोसाइटी में अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। बीवी और माँ के अलावा मेरी भी एक शख्सियत है।
0: ये तो मुझे मालूम ही नहीं था।
3: बात को हंसी में मत उड़ाओ जगदीश, मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम किसी कंपटीशन में नहीं बैठना चाहते तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते कम से कम?
0: रामा, तुम इस हद तक भी सोच सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ये तो भूल ही गया था कि आदमी के अपने हाथों से बनाई गई छुरी खुद उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। मगर इस बात को हमेशा याद रखना रामा, कि तुम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहती हो वहां पहुंच कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी औरतों को समाज कोई बहुत अच्छा दर्जा नहीं देता।
3: मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने में यकीन रखती हूँ।
0: तुम जो भी करना चाहो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, मगर इतना जरूर याद रखना कि पानी की तमन्ना में भटकते रहने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस ऊंचाई की तह तक तुम पहुंचना चाहती हो वहां पहुंचकर तुम्हें मालूम होगा कि हकीकत क्या होती है। और
3: ये सब फजूल बातें हैं। दुनिया में किसी एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जो शोहरत और इज्जत की ऊंचाइयों को छूना ना चाहता हो।
0: इज्जत और शोहरत को हासिल करना और उसे कायम रखना, ये बातें तो समझ में आती हैं, मगर आंखों पर पट्टी बांधकर दीवाना वारों के पीछे भटकते रहना अकलमंदी नहीं होती।
3: ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और दानिशमंद उसे ही कहा जाएगा जो रोज बरोज की नई नई तब्दीलियों को पेशे नजर रखकर उनसे समझौता करके आगे बढ़ता है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते।
0: रमा, मैं हकीकत में यकीन रखता हूँ।
3: ताज्जुब है, ये सब तुम कह रहे हो?
0: जी हाँ, मैं ही कह रहा हूँ।
3: मगर तुमने तो आज तक जमाने की परवाह ही नहीं की, वक्त की धड़कनों को पहचाना ही नहीं। वक्त के साथ चलने की बात तो दरकिनार, तुम तो ऐसी हकीकत

0: मुसीबतों से भी बचते रहे जो हमेशा अहम तरीन दर्जा रखते हैं।
1: ये ठीक है कि मैंने कभी समाज की परवाह नहीं की, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने समाज के बुनियादी उसूलों की कभी अनदेखी नहीं की। हर काम समाज के उसूलों को जहन में रखते हुए किया है, मगर
0: हाँ, मैंने समाज के हर उसूल को तोड़ा है, यही कहना चाहते हो ना?
1: प्लीज रमा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम तो यूं ही।
0: मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। इतनी भोली नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं
1: हाँ, कहो कहो, क्या कहना चाहती हो, बोलो। अरे बोलो, चुप क्यों हो गई? सच तो यह है रमा कि तुमने शुरू से ही ऐसे ऊंचे रेशमी खाद देखे हैं, इसलिए तुम्हें क्लब और पार्टियों की रंगीनियों में दिलचस्पी है। घर में कदम रखते ही तुम्हारा दम घुटने लगता है। तुम्हारे लिए घर सुकून बख्शने वाली जगह का नाम नहीं है, बल्कि एक कैद खाना है, बेमानी जगह है।
0: सब लोग तुम्हारी तरह पिछड़े हुए नहीं होते।
1: लेकिन सब तुम्हारी तरह भी नहीं।
0: मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी तरह से जीना चाहती हूँ।
1: और मैं भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि इस घर में जिस तरह मैं चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझी? मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं हूँ, तुम्हारा शौर।
0: तुम भी कान खोकर सुन लो, मुझे किसी का हुक्म सुनने की आदत नहीं रही है, मुझे अब हुक्म देने की आदत पड़ चुकी है। तुम्हारा घर और तुम्हारे उसूल तुम्हें मुबारक। मैं ऐसे घर में एक भी लम्हा रहना नहीं चाहती, चाहे सांस लेने के लिए भी किसी से इजाजत लेनी पड़े।
1: हाँ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, जहाँ जीता है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने?
0: हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम क्या कोसते हो? एक आला अफसर होकर भी तुम्हारे जरिए की बातें सुनती रहो?
2: अरे अभी क्या कर रही हो बेटी, कुछ सोचा तो होता।
0: मैंने खुद सोच लिया है, तुम बाबा की जगह मुझे लो।
1: कान खोल कर सुन लो रमा, बाबा को हाथ लगाओ तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। और एक बात और सुन लो, तुम खुद अपनी मर्जी से जा रही हो।
0: बाबा पर जितना हक तुम्हारा है उतना बल्कि उससे भी ज्यादा हक मेरा है, मैं उसकी माँ हूँ।
1: ताज्जुब है, अपने हकों का तुम्हें आज ख्याल आया? तुमने इसे अपना समझा ही कब? उसकी खुशी से ज्यादा तुमने क्लब और अपनी आजादी को तरजीह दी। उसे तो तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं उस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा।
2: हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे भगवान के लिए कुछ तो सोचो, अपना नहीं तो इस मासूम के बारे में कुछ सोचो।

0: तुम ठीक ही कहते थे जगदीश, मैं आंखों पर पट्टी बांधे अंधे कुएं की तरफ भागती चली गई। जिस आईने को मैंने मजबूती से पकड़ रखा था वो तो कब का टूट चुका, मगर मैं अभी तक उस भुलावे में थी कि वो अभी तक साबुत है, वन पीस है।
1: बस कर बेटी, बस कर।
0: जो भी हो उसे बाहर से ही लौटा देना, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती।
1: ठीक है।
2: अरे जगदीश बाबू आप यहाँ? अरे रमा बेटी देखो कौन आया है।
0: काकी कहा ना मुझे परेशान मत करो।
3: तुम रहने दो काकी, मैं खुद ही।
0: आप यहाँ? मगर यहाँ का पता आपको कहाँ से मिला?
3: रमा दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसी दफ्तर में काम करती हो तो मैं शायद खैर तुम्हें खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना तबादला करवा लिया है।
0: क्या?
3: और वैसे देखा जाए तो तुम्हें परेशान होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं भी क्लास वन ऑफिसर हूँ। अच्छा मैं चलता।
0: कहाँ चल रही है? रुक जाओ जगदीश, भगवान के लिए रुक जाओ। मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारी मुजरिम। तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, मगर मगर आप मुझे इस तरह अकेला और बेसहारा छोड़कर मत जाओ। अब मैं जान गई हूँ कि आदमी रुपए पैसे और रुपए से बड़ा नहीं होता।
3: मगर अम्मा अब इन बातों से क्या फायदा?
0: ऐसा मत कहो जगदीश, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मुझे अपनी बेवकूफियों की बहुत सजा मिल चुकी है। ऊंचाइयों की तह पे पहुंचने के बाद ही मुझे अपनी कमतरी का एहसास हुआ है। जगदीश, जगदीश मुझे माफ कर दो।
3: ये क्या कर रही हो रमा? उठो, उठो। ऊंचा इंसान वही होता है जो अपनी गलती का इतराफ करता है। चलो रमा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा घर और तुम्हारा बेटा आज भी तुम्हारा इंतजार कर

ऊंचाइयों की तह। सामिन भी आप सुन रहे थे जनाब प्रेम पाठक का तहरीर करदा ड्रामा, पेशकश प्रेम वोरा की थी, मुआविन थी सरफराज अहमद। हिस्सा लेने वाले फनकार थी राम मैनी, शर्मिला मनकानी, राजकुमारी प्रसाद, बलबीर कपूर, एस के बैक्टर, सतीश कक्कड़ और कुसुम गोयल। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की शुरुआत। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। आज के इस प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के गाए कुछ फिल्मी नगमे, चूंकि आज उनका यौम पैदाइश है।

अनाड़ी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, नगमा निगार थे शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन। और सामने लीजिए आप सुनिए पत्थर के सनम फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज में, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का नगमा सुनिए लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों को, नगमा निगार, वर्मा मलिक, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक बार मुस्कुरा दो, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश के साथ आशा भोसले की आवाजों में। मौसीकार थे यूपी नैयर। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। 10 नंबर फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं।

आप सुन रहे थे जिंदगी और तूफान फिल्म का नगमा, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने ये सुनिए श्री 420 फिल्म का ये नगमा। एक मरतबा फिर गुलकार है मुकेश, नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

सलाम मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मिलन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मी कांत प्यारेलाल। और सामने आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हसरत जयपुरी का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाए शंकर जयकिशन ने। आवाज़ें हैं मुकेश और शारदा की, फिल्म है अराउंड द वर्ल्ड।

0: सामिन सरमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। आबदोज शिकन INS मलवान को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आज़ादाना और खुला बनाए जाने रखने के अपने अज़्म को दोहराया। फ्रांस में 15 साल की उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 11वीं रात हमले किए हैं। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर INS मलवान को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माही तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज़ है। मुल्क में ही जंगी जहाज़ तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि INS मलवान मुल्क के साहली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आज़ादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहिया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंज़र की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौक़े पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मीटिंग में इक्तसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर ख़ास तौर पर तबादले ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर खोज किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो लीजिए दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आपकी फरमाइशों के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे देखने का नज़रिया सुंदर होना चाहिए। फूलों से नहीं, मुस्कुराहटों से महकती है ज़िंदगी। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की। अगली फरमाइश है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा की। अगली फरमाइश करता है हमारे अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञानचंद, पूनम, कोमल, चंदन, अंकुश, लक्ष्य, माधव, रवि कुमार और इनके साथ है सोनू। अगली फरमाइश करता है दोस्तों हमारे गांव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। आपकी पसंद

फरमाइशी प्रोग्राम में अगली फरमाइश करता है गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद वारसा, विशाल बारसा, विकास, रोशनी और शगुन। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश रजत और साथ में बेबी गरिमा। अगले फरमाइश करता है हमारे चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन और साथ में है वैंकुवर से रोबिन सिंह जोशन। तो लीजिए दोस्तों, आपकी फरमाइशों पर आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।

0: भैया यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
0: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, हर सुबह नया संदेश लेकर आती है, बीते हुए कल को पीछे छोड़ जाती है। जो आज को जीना सीख गया, वही खुश रहना और जिंदगी जीना सीख जाता है। लीजिए चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। युवाणी कार्यक्रम के आपकी पसंद प्रोग्राम के लिए हमारे पास अगली फरमाइशें आई है। हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और शहनाज की। अगली फरमाइश करता है हमारे दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और साथ में नोखेलाल वर्मा की। अगला फरमाइश है हमारे पास कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से, सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव की। दोस्तों, अगली फरमाइश करता है हमारे गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किर्शन मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सहारण और उनके साथ है सुनील पाईवाल शर्मा। दोस्तों, अगली फरमाइश करता है हमारे गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार की। आपकी पसंद प्रोग्राम की अगली फरमाइश करता है छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। अगली फरमाइश करता है हमारे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह, शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज। अगला पत्र है हमारे पास दोस्तों गांव दौलतपुरा से शोलाल जी बेनीवाल, शांति देवी, मंजू देवी, मोहित और हेमंत बेनीवाल का। अगला पत्र है हमारे पास सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव हीरावाड़ी फाजिल का पंजाब से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। इन्हीं के साथ है श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम, किरोड़ीवाल और सुरेंद्र भादु। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए ये अगला फिल्म गीत।

दोस्तों, अच्छे विचार मन को शक्ति देते हैं, अच्छे शब्द रिश्तों को शक्ति देते हैं, और हमारे अच्छे कर्म जीवन को शक्ति देते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, खुश रहने का राज

बहुत आसान है। जो मिला है उसका सम्मान कीजिए, शिकायतें कम और धन्यवाद कीजिए। यही सुखी जीवन की पहचान है। लीजिए, फरमाइशों का सिलसिला जारी है। चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं एक और फिल्मी गीत। आपकी फरमाइशें आई है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्नव और सत्यम की। अगली फरमाइश करता है हमारी पद्मा टॉकीज निपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी। अगली फरमाइश करता है हमारे भोपाल मध्य प्रदेश, मनीष, हर्षिता और उनका सारा श्रीवास्तव परिवार। अगली फरमाइश करता है हमारे सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक की। अगली फरमाइश करता है हमारे सूरतगढ़ से लेखराज जी, सुरजीत सिंह, रवि कुमार, पवन कुमार, कुंदन लाल शाक्य और उनके साथी। अगली फरमाइश करता है हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और उनके साथ साईं। अगली फरमाइश करता है हमारी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल। अगली फरमाइश करता है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और कांता चौधरी। अगली फरमाइश करता है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। अगली फरमाइश करता है हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शायना और निवान की। अगली फरमाइश है हमारे पास नई बस्ती गंजडूडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और तैमूर हाशमी की। अगला पत्र है हमारे पास सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जानवी का। अगला पत्र है दोस्तों हमारे पास प्रमेलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषिका। अगला पत्र है दोस्तों हमारे पास मंडी गोलूवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान का। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव जोगीवाड़ा श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष। अगली फरमाइश करता है हमारे एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का। दोस्तों हर व्यक्ति के भीतर एक अनमोल प्रतिभा छिपी है, जरूरत है उसे पहचानने की और खुद को अवसर देने की। अपनी सोच को ऊंचा रखिए क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और दूसरों के साथ भी हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव ही जाएगी। तो इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहिए और दूसरों के साथ भी सकारात्मक से व्यवहार कीजिए। लीजिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम के बुधवार के यानी आज के आपके पसंद प्रोग्राम में आप भी अपने पत्र हमें भेज सकते हैं ताकि हम अगले बुधवार के प्रोग्राम में आपके नाम शामिल कर सकें। FM 100.1 MHz पर अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए दोस्तों, सबसे पहले एक पोस्ट कार्ड लीजिए, उसमें लिखिए गीत के बोल, फिल्म का नाम और लिखकर हमें भेज दीजिए। हमारा पता है आपकी पसंद प्रोग्राम द्वारा केंद्र निर्देशक युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़, पिन कोड है 335804। दोस्तों, हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें।

0: या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, खुश रहने के लिए सब कुछ होना जरूरी नहीं होता, जो है उसमें संतोष होना जरूरी होता है। अच्छे संस्कार और हमारी अच्छी सोच किसी भी डिग्री से ज्यादा मूल्यवान होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। लीजिए चलते हैं दोस्तों फरमाइशों की ओर और आपके पत्रों के साथ आपको सुनाएंगे कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत। अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास पत्र आए हैं बोरखेड़ा पिडामल जिला उज्जैन से, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक, साथ में चेतन और दिलीप सिंह पवार। अगला पत्र है हमारे पास गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मिका बिरक। अगली फरमाइश करता है हमारे पास तहसील भादरा अनूप शहर से, गजानन शाश्वत, ताराचंद शाश्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, मुरली लाल शर्मा, ममता, मीतू, किनू, मदनलाल शर्मा, सी कृष्ण कुमार, महावीर लोहरा और इनके सभी परिवार वाले। अगली फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश और करुणा वर्मा। अगली फरमाइश करता है गांव फ्रांसी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी, उनके साथ है सौरव। अगली फरमाइश करता है हमारे वीरम गांव से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी। अगली फरमाइश करता है हमारे चक 58 NP रायशनगर से, सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरबंश लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी और उनके साथी। अगली फरमाइश करता है हमारी मानसा पंजाब से, जगदीश रॉय गर्ग, अंजना रानी, रवि, शिल्पा। अगली फरमाइश करता है गांव घमंडिया सूरतगढ़ से, जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और उनके साथ है ईवा धारणिया। अगले फरमाइश करता है हमारे रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। अगले फरमाइश करता है युवाणी कार्यक्रम की आपकी पसंद प्रोग्राम के श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगली फरमाइश करता है हमारे सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। अगली फरमाइश करता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित रॉय और उनके साथ हैप्पी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, मुस्कुराहट वह उपहार है जिसे देने पर कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन पाने वाला अमीर महसूस करता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी सोच हमेशा युवा रहती है। दोस्तों, जीवन छोटा नहीं है, हम उसे व्यर्थ की चिंताओं में छोटा बना देते हैं। खुलकर जीना सीखिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। हमारा अगला पल, अगला मिनट, अगला सेकेंड क्या होगा, हम होंगे या नहीं, या फिर हम कौन

सी दुनिया में कैसे होंगे हम में से कोई नहीं जानता, इसीलिए जो है एट प्रेजेंट आपके पास आप जैसे हैं उसी पल का आनंद लीजिए और खुश रहिए, खुशहाल रखिए। लीजिए चलते हैं अगली फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं अगला फिल्मी गीत। अगला फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है हनुमानगढ़ राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू महेंद्र सुथार, कालू मोहनलाल सुथार और महावीर की। अगला पत्र है हमारे पास जिला हनुमानगढ़ गांव बहलोल नगर से, पूजा इंदलिया, रमाया, अलका, कविता और गंगा का। अगला पत्र है हमारे पास श्रीगंगानगर से, नेकी राम बांसीवाल, जोनी बांसीवाल, धनराज, तनु और लविश का। अगली फरमाइश करता है हमारी अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगली फरमाइश करता है गांव बनवाला हनवंता फाजिल का पंजाब से, विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और उनका समस्त मायल परिवार। अगली फरमाइश करता है हमारे प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से, आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। अगली फरमाइश करता है हमारे मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी और उनके साथ है ओम कुमार। अगली फरमाइश करता है हमारी जनकपुरी सहारनपुर से, जोन डिकेट्रो, रोजी पर्ल और विलिस। हमारे अगले श्रोता हैं जो आपकी पसंद प्रोग्राम की फरमाइश करता, विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक और तन्वी, उनके साथ है जयपाल यादव। अगले फरमाइश करता है हमारे ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और मिथिलेश वर्मा। अगले फरमाइश करता है हमारे भटिंडा रोड मंडी डबवाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। तो लीजिए दोस्तों आपको सुनाते हैं अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों जिंदगी को बोझ नहीं अवसर समझिए, मुश्किलों को दुश्मन नहीं शिक्षक समझिए, मुस्कुराइए, सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि क्या पता सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी हो।

दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति और चेहरे की मुस्कान है। इन्हें संभाल कर रखिए। ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है, जब आप मुस्कुराएंगे तभी वो मुस्कुराएगी। नीचे चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइशों पर कार्यक्रम में अगला गीत। अगला गीत सुनने के लिए फरमाइशें आई हैं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु निरंजन सिंह सौम्या और अविरल की। अली का डब्बा वाले से बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता और कुलदीप गांधी की। अगले फरमाइश करता है हितेंद्र दास आसाम से। अगली फरमाइश करता है साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। हमारे अगले फरमाइश करता है गांव ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान। अगली फरमाइश करता है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। अगली फरमाइश करता है हमारे कासी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रिवाड़े, भारती, जानवी और वैष्णवी, उनके साथ हर्षिल। अगली फरमाइश करता है हमारे सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना। अगली फरमाइश करता है उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती, विनीत मिथिल और उनके साथ है बाबू भाई चांदीवाला। अगली फरमाइश करता है पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू की फरमाइश। अगली फरमाइश है हमारे पास धानोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल की। दोस्तों, जीवन ऐसे जियो जैसे कि कोई नहीं देख रहा हो और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे कि हर कोई सुन रहा हो।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित मेगावाट 918 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

दोस्तों, ज़िंदगी एक मुसाफिर खाना है, हर दिन नया अफसाना है, हंसते हंसते सफ़र तय करना है, यही सबसे बड़ा खजाना है। लीजिए चलते हैं आपकी फरमाइशों की ओर और आपके सुनाते हैं अगला फिल्मी गीत। अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशें आई है गांधीनगर गुजरात से, जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्षल और दीपल की। अगले फरमाइश करता है हमारे बीरवाना गांव से जगदीश शर्मा। अगले फरमाइश करता है कुंडलवाणी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी। अगली फरमाइश करता है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। अगली फरमाइश करता है हमारे जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र। अगले फरमाइश करता है हमारे मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम रसेद और यशफ। अगले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाज़ार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, भाई सुचा सिंह पाठक और विनोद पुरी। अगली फरमाइश करता है हमारे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। अगली फरमाइश करता है गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। अगली फरमाइश करता है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु। अगली फरमाइश करता है

ऊपरकोट मोहल्ला चोखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज राज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अनाज अब्बान और उनका समस्त अब्बासी परिवार। अगली फरमाइश करता है कि दुबई नगर सिद्धतपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सुबीहा जुबैर, अंजुमन खान। अगली फरमाइश करता है नलेश्वर से, महाराष्ट्र से, पीएस नवहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल। अगली फरमाइश करता है मध्य प्रदेश से, ममता, संजय और बेबी किट्टू। अगली फरमाइश करता है अमरगढ़ सादुल शहर से, कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, हरविंदर और प्रीतमान। अगले फरमाइश करता है ओल्ड लिसनर, रामगढ़ कैंट से, ममता मोदी। अगली फरमाइश करता है मंडी केसरी सिंहपुर से, श्यामलाल राजपाल, जयपाल और संदीप कुमार, उनके साथ है चिमनलाल। अगली फरमाइश करता है गांव नथाना पंजाब से, हमारे पास पत्र है हरजिंदर शिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता का। अगली फरमाइश करता है हमारे गांव चैनपुरा, तहसील धोरीमना, जिला बालोतरा, राजस्थान से, जगदीश भारती गोस्वामी।

लीजिए चलते हैं दोस्तों आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की ओर। आज ही के दिन 1997 में अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख नेता, उनका निधन हुआ था। आज के दिन यानी 22 जुलाई के दिन ही दोस्तों 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी की, जो आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष इतिहास की बड़ी उपलब्धि बना। आज ही के दिन 1969 में सोवियत संघ ने लूना 15 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की ओर भेजा था। दोस्तों ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। इतिहास हमें सिखाता है कि जो राष्ट्र अपने अतीत को समझते हैं वही अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं, और हर घटनाएं इतिहास बनती चली जाती है।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

युवाशोता अभी यववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनिएगा 6:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर और 6:45 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल आप सुनेंगे संध्या 7 बजे जिसमें आज पत्रोत्तर के अंतर्गत श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये कार्यक्रम व्हाट्सएप और ईमेल व पत्रों पर आधारित होगा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे 8:00 जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत में कुछ और नगमे हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे कुछ और फिल्मी नगमे फिल्म संगीत कार्यक्रम में 10:00। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर। सुगम संगीत सुनिएगा 9:15 पर जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 पर हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 6:05 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। सारे भाना भरावां को हरजीत कौर दी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं कुछ बातां कुछ गीत प्रोग्राम विच बई चंगे चंगे गीत घिन के हाजिर हां। प्रोग्राम दे शुरू विच मैं तुहां को सुनवेंदी पई हां एक प्यार भरा गीत। ए प्यार जड़न थीवेंदा है ना, बस थीवेंदा है, प्यार कीता नहीं वेंदा। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं ता दूरियां आपे मिटवेंदियां हैं। एक बहु प्यारा गीत इस प्यार तू चेते आंदा पिया है। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए। ते चस घिनो इस गीत दी मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां विच। ए गीत असां गिद्दा है फिल्म गुड्डी तू।

प्यार बहुत वड्डी नियामत है। ये तां तुसा गीत सुन के समझ गए हो सो। ए है गुड्डी फिल्म दा गीत, कलाकार हन मोहम्मद रफी। हुन कुछ हसन हसावन दी गल करें दे हां। मैं तुहा को एक गल सुनवेंदी हां। गल है हिक कंजूस दी। हिक कंजूस दे घर हिक दीवार मेहमान आए। उन्हें अपने पुत्र को आखा, वंज बाजार तू गोश्त घिनना। पुत्र हिक घंटे बाद वाला पर खाली हाथ जुलेंदा। कंजूस आधा है, गोश्त किडे है? पुत्र अगू आधा है, मैं गोश्त आले को आखा गोश्त देवन वास्ते। ओ आधा हुने आखा इंजा उमदा गोश्त देवा जीवे मक्खन। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं मक्खन गिनचा। वल मैं गया स्टोर ते, मैं आखा मक्खन दे दियो। हूँ आखा मैं तुहा को इंजा उमदा मक्खन देसा जीवे शहद होवे शहद। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं शहद ही गिनचा। मैं आखा चलो शहद ही दे दियो। हुने आखा एझा शहद देसा जीवे साफ सफाक पानी। वल मैं सोचा पानी ता मेरे घर विच ही बतेरा है। हुन पियो कंजूस के कहंदा है, शाबाशी है मेरे पुत्र, हिक दी तू जरूर मेरा ना रोशन करे सा। पर हिक गलती कीती है ताए, हिक दुकान तू दूजी दुकान विच वंजन विच तेरी चप्पल घेस गई हो सी। ते पुत्र भी ता कंजूस पियो दा है ना। आधा है इतना पागल काई ना मैं, चप्पल ता मैं मेहमान दी पा गया हाँ। तो अनु भी हसी आई ना। हुन मैं तुहा को सुनवेंदी पई हाँ एक बहु वधिया गीत जसबीर जस्सी दी आवाज विच।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कुछ पुराने फिल्मी नगमे फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शहबाजकर 30 मिनट होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज टू के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने इस पर बाधाएं खड़ी की, जिससे मालूम होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
1: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन रखा गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी नई दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने विद्यार्थियों के संघर्ष को वास्तविक बताया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इधर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच कर अपना विरोध जताया। भाजपा के पैदल मार्च को पुलिस ने पानी की बौछार कर रास्ते में रोक दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर मेट्रो फेज टू का भूमि पूजन किया। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड पर यह कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद श्री शर्मा ने मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में सफर भी किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी।
2: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलाद पुरा से

0: लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम और भी तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
1: 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेट्रो परियोजना के इस दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितम्बर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासा कोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा, जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अधिकारियों के साथ लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे अधिकारियों को चुनाव से पहले हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों को 15 अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
3: नगरीय निकायों का हम पहले तो इनका चुनाव कराएंगे, जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और दो चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल में 3 साल जो है, अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर होगा और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त तो और उनसे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है, क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
1: राज्य में 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधानसभा की ओर से इस साल मार्च महीने में पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राज्य निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार करीब 30 साल पुराने नियमों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और ज्यादा प्रसव भार वाले प्रथम रेफरल इकाइयों में ये पहल चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव ने बताया कि मातृ और शिशु सेवाओं को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। इसके तहत पिंक एप्रेन में तैनात नर्सिंग कर्मी, ANM या अन्य प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में काम करेंगी। वे अस्पताल पहुंचने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ भर्ती होने से लेकर प्रसव तथा उसके बाद की देखभाल तक के हर चरण में सहयोग करेगी। जरूरत पड़ने पर रेफरल प्रक्रिया में भी समन्वय सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चिन्हित अस्पताल में 24/7 मात्र शिशु हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों के लिए प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 104 जननी एक्सप्रेस, हेल्प डेस्क और प्रसव सखी की एकीकृत व्यवस्था से गर्भवती महिलाओं के लिए घर से अस्पताल तक निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की युवा हितैषी योजनाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज जयपुर में माई भारत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल को युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को युवाओं से संबंधित योजनाओं, कौशल विकास,

0: चैंपियनशिप, रोजगार, खेल और नवाचार से जुड़े अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। 1947 में आज ही के दिन तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत करने पर विचार विमर्श किया गया था। ये निर्णय केवल राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने के साथ ही देश की पहचान, एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने तिरंगे को एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का अमर प्रतीक बताया है। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1987 में आम को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। ये दिवस जैव विविधता और कृषि अर्थव्यवस्था के महत्व को भी दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: आम हर खास ओ आम के लिए एक स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वेद पुराणों और महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी आम का उल्लेख मिलता है। इसे प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। वर्तमान में देश में आम की 1000 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं। इनमें से विशिष्ट स्वाद, गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर कई को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त है। देश में आम की लंगड़ा, सफेदा, दशहरी, चौसा, रतौल और अल्फेंजो प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45-50% मानी जाती है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने बताया कि अब आवेदक 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तारीख 20 जुलाई थी। इस मुकद्दस सफ़र पर जाने के इच्छुक लोगों की मांग पर इसे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि हज यात्रा के लिए राजस्थान से अब तक 4000 से ज़्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में यंग प्रोफेशनल्स के 5 पदों पर संविदा भर्ती के लिए युवा अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती का उद्देश्य विशेषज्ञ युवाओं की सेवाएं लेकर अपराध नियंत्रण, नशा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, AI और नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। ज्यादा जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले माह विकास, सुशासन, स्वास्थ्य, ग्रामीण कल्याण और आधारभूत संरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। सुशासन के क्षेत्र में टोंक जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जून 2026 में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के आधार पर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान ही सुशासन की पहचान है और सभी अधिकारी इसी भावना के साथ काम करते रहें। जिले के मालपुरा क्षेत्र को इस महीने विकास की बड़ी सौगात मिली। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए जिला अस्पताल भवन और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4-लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मालपुरा क्षेत्र में आने वाले समय में लगभग 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें पेयजल परियोजनाएं, ब्रह्मा तालाब का सौंदर्यकरण, भूमिगत विद्युत लाइनें, सीवरेज व्यवस्था, ITI की स्थापना

0: स्थापना, पशु चिकित्सालय भवन और सड़क विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व आवश्यक जांचें कर स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने टोडा राय सिंह ब्लॉक की बैठक लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मालपुरा जिला अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, ANM और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अभियान को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान लगातार जारी है। पिछले दिनों जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोडा राय सिंह और मालपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविरों में आवासीय पट्टे, आयुष्मान कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और TB मरीजों को पोषण किट, मिनी किट तथा अन्य योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। मालपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचोलिया में आयोजित शिविर में एक महिला हगामी देवी की लंबे समय से बंद पड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन कुछ ही घंटों के प्रयास से दोबारा शुरू कर दी गई। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अजमेर संभाग स्तरीय जनसुनवाई अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत कुमार छाबा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें टोंक जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने VC के माध्यम से भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सहकार सप्ताह आयोजित किया गया। सप्ताह के तहत कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों, व्यवस्थापकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। टोंक जिले में भी एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। मॉनसून के सक्रिय होने से कई स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माय संसद माय चर्चा सारू तैयार। जयपुर माय भाजपा और कांग्रेस पैदल मार्च कर एक दूजा रे खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा माय भूमि पूजन की नो। प्रदेश रा सरकारी अस्पताल माए बत्ता जोखिम वाली आस वाली लुगाइयां सारू प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करी जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्षरा सदस्या रा हंगामा रा कारण आज ही ठीक ढंग नहीं चाल सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार पावस सत्र रा पहला दिन हुई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माथे चर्चा सारू तैयार है। संसद भवन परिसर में खबरनवीसा सागे बातचीत करता था कां रिजिजू कहो कि ई चर्चा सारू नियम तय करिया जावना चाहिए। वे कहो कि सरकार विपक्षरा दला ने ई मुद्दा माथे खुली चर्चा सारू बुलाया हा पण वे ई माथे अड़चन पैदा की नी।
2: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: इबीच भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी कानियों काल प्रधानमंत्री

0: ਰਾ ਰਹਿਵਾਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਧਰਨੋ ਦੇਵਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਜਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਗੇ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਮਾਥੇ ਮਾਰੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਪਖਰਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਖੀ ਜੀ ਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬਤਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਥੇ ਨੂਆ ਸਿਰਾਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਨੋ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾ ਆਈ ਈ ਮੁੱਦਾ ਮਾਥੇ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੀ ਓਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚਿਆ। ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਖਿਆਲੇ ਰੀ ਓਰ ਕੂਚ ਕਰ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਓ। ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਣੀ ਰੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰ ਔਰ ਰੋਕ ਦੀਨਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਦਨ ਰਾਠੌੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਾਏ ਵਿਪਖਰਾ ਨੇਤਾ ਰੀ ਓਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾ ਰਹਿਵਾਸ ਸਾਮੀ ਦਿਆ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਤਾਇਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਰੀ ਓਰੋਂ ਕਰੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਔਰ ਰਾਜਰਾ ਪਹਿਲੀਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋ ਸੀਤਾਪੁਰਾ ਮੈਟਰੋ ਯਾਰਡ ਮਾਏ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਪਾਛੇ ਵੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਛੋਟੀ ਚੌਪੜ ਤਾਈਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਮਾਏ ਸਫ਼ਰ ਕੀਨੋ। ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧ ਜਾਵਣ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਵੈਲਾ।
1: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
0: 13,000 करोड़ ਰੁਪਇਆਂ ਬੱਤਾ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਮਾਏ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰਾਂ ਟੋਡੀ ਮੋੜ ਤਾਈਂ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਿਓ ਚਾਵੇਲਾ। ਔਰ ਬਿਊਰੋ ਮਾਣਾ ਖਬਰ ਨਵੀਸੋਂ।
2: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासाकोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा, जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ने साफ कोई सागे निपक और शांतियों करावन सारू मोटा पैमाना माथे प्रशासनिक फेरबदल रा हुकम दीना है। आयोग साफ कीनो है कि गृह जिला, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अहलकारा सा गई लंबा भगत एक ही ठौड़ काम कर रहा अहलकारा ने चुनाव पहली हटाया चावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि संबंधित महकमा ने 15 अगस्त ताई तबादला रो काम पूरो करण सारू कही चियो है।
3: नगरीय निकायों का हम पहले तो इनका चुनाव कराएंगे, जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और 2 चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल में 3 साल जो है अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर हो और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और उनसे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
0: राज्य में अब 32 संतान वाला ही पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेला। विधानसभा ओरों इस साल मार्च महीना माए पास करी जिया राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राज्य निर्वाचन आयोग रा नुआ दिशा निर्देशों रे मुजब इनु जुड़िया 30 साल जूना नियम ने खत्म करतियो चियो है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्य रा सरकारी अस्पतालों में घना जोखिम रो सामो कर रही आस वाली लुकाइयां रा सुबिता सारू प्रसव सखी व्यवस्था सारू करी चावेला।

0: प्रदेश मेडिकल कॉलेज जुड़िया अस्पताल जिला अस्पताल और बत्ता जापा वाली प्रथम रेफरल इकाइया माए न्यारा न्यारा दौर माए ओ सुबी तो मुहैया करायो चा वेला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे शासन सचिव आ जानकारी दीनी वे बतायो कि पिंक एप्रिन माए तैनात नर्सिंग कर्मचारी एएनएम या दूजी सिखावण लियोड़ी महिला स्वास्थ्य कर्मचारी प्रसव सखीरा तौर काम करेला वे बत्ता जोखिम सागे आवण वाली आस वाली लुगाइया रे अस्पताल माए भर्ती भेवण लेर वहाँ पाछरी देखभाल ताई रा हर काम माए मदद करेला श्रीमती राठौड़ बतायो कि हर चिन्हित अस्पताल माए 7 दिन 24 घंटा काम करण वाला मातृ शिशु हेल्प डेस्क बनाया जावेला वे कहो कि 104 जननी एक्सप्रेस हेल्प डेस्क और प्रसव सखीरा तालमेल वाली व्यवस्थाओं आस वाली लुगाइया ने घरों अस्पताल ताई बिना अड़चन सेवा मुहैया कराउण तय करियो जावेला मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार री नौजवाना रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां ने माई भारत पोर्टल नूं जोड़वा रा हुकम दीना है वे माई भारत पोर्टल ने असरदार तरीकों लागू करण सारू आज जयपुर माई राखी जी मीटिंग माई बोल रहा है मुख्य सचिव कहो कि युवा मामलात और खेल मंत्रालय री मददों ई पोर्टल ने नौजवाना सारू सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रा तौरों और मजबूत बनायो जा रियो है वे सगला महकमा ने नौजवानों जुड़ी योजनावां कौशल विकास इंटर्नशिप रोजगार खेल और नवाचार जुड़िया मौका एक ही मंच माथ मुहैया करावन रा हुकम दीना आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है साल 1947 माय आज इरा दिन तिरंगा ने आजाद भारत रा राष्ट्रीय ध्वज रा रूप माय स्वीकार करण रे बारा माय विचार करी चियो हो ओ फैसलो देश रा झंडा ने स्वीकार करण सागे देश री पहचान एका और लोकतांत्रिक आदर्शां रो औपचारिक ऐलान हो ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनता ने शुभकामनावां देता थका तिरंगा झंडा ने एका अखंडता खुद रो मान और गौरव री अमर निशानी बतायो आज राष्ट्रीय आम दिवस है आम ने बधावो देवन सारू राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड साल 1987 माय ई दिन री शुरुआत की नी ही ओ दिवस जैव विविधता और खेती बाड़ी में जुड़ी माली व्यवस्था रो महत्व ही बतावे है पेश है एक रपट
1: आम हर खासो आम सारू केवल स्वाद वालो फल ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति रोई अभिन्न हिस्सो रियो है वेद पुराण और महाकवि कालिदास री रचनावा माए ई आम रो जिक्र आवे है इनने प्रेम और बरकत री निशानी मान्यो जावे है मौजूदा दौर माए देश माए 1032 भातरा आम री पैदावार ली जावे है आमाए ऊ खास स्वाद गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान रा आधारू केई ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेती मिल गयो है आमरी लंगड़ा सफेदा दशहरी चौसा रतौल और अल्फेंजो खास किस्मा है भारत आमरी उपज लेवण वालो दुनिया रो सबू मोटो देश है दुनिया माए आमरी कुल उपज रो 45-50% हिस्सो भारत रो मान्यो जावे है समाचार कक्षो सलेहा गाजी
0: हज यात्रा 2027 सारू ऑनलाइन तरीकाउं अब 24 जुलाई ताई अर्जी दी जा सके है केंद्रीय हज कमेटी रे मुजब हजरा मुकद्दस सफर माथा जावण री मर्जी राखण वाला री मांग पाछे तारीख 20 जुलाई बधार 24 जुलाई करीची है हजरा मुकद्दस सफर माथा जावण सारू प्रदेश हाल ताई 4032 अर्जियां दाखिल करी जा चुकी है 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला इन कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला इन सारू आप ही 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे सुझाव भेज सको हो नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है राजस्थान पुलिस मुख्यालय माए नौजवान पेशेवरां रा 5 ओहदा माथे संविदा रा आधार भर्ती सारू युवा उम्मीदवारों अर्जियां मांगी ची है जानकार नौजवाना री सेवा लेर अपराधा और नशारी लत माथे काबू करण सड़का माथे हिफाजत AI और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकाउं लागू करण सारू भर्तियां करी जा रही है आखिर

0: खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए संसद माए चर्चा सारू तैयार। जयपुर माए भाजपा और कांग्रेस पैदल मार्च कर एक दूजा रे खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा माए भूमि पूजन कीनो। और राज्य रा सरकारी अस्पताल माए बत्ता जोखिम वाली आस वाली लुगाइयां सारू प्रसव सखी व्यवस्था सारू करी चावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरत का की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया, प्रस्तुता रमेश चावरिया।

राम राम सा कार्यक्रम चौपाल सुनिया सगळ्या परिवाराने भाई रामेश्वर का घणान घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो, आज आपा कार्यक्रम ले रहे हैं। हाँ, और इंगमा आज थारा के है कह कागज जका है, मेल जका है, बे बन जांगा। और आज के है का आपने सुरतगढ़ का आसा पासे और कई जगह बरसात जकी है, वह भी होगी। और यहाँ केस कहाँ का लगभग जो को मौसम है वो बड़ो लगभग ठंडो हो गयो, कि उमस जकी ही कि गर्मी जकी ही बीशू अपन थोड़ सी निजात जकी हवा मिल गई। और अब भी अपना जका मौसम वैज्ञानिक है भी आप बात बताओ है कि अब धीरे धीरे क्या है कि मानसून जो को है वो सचेत हो जाएगो, और अपने ही क्षेत्र का वहाँ बरखा जकी है बाबी होगी, और कि गर्मी से अपन और भी राहत मिलेगी। और अपनी जकी फसलें हैं, अपनी जकी जितनी भी खेती बाड़ी है, बिना भी इन चीज़ को फायदो है, जकी बरखा है, जकी बूंदाबांदी होने आ रही है, बीच की अगर नरमा जैसी फसल है, या फिर अपनी जकी दूसरी फसलें हैं, चाहे आप बाजरी बीज रखी है या फिर गुआर की जकी बीजांत कर रखी है, तो बिना भी आ बरखा जकी है बड़ी काम करेगी, क्योंकि लारला दिन ऐसी गर्मी जकी है बा बट निकाल रखा, पर अब की थोड़ी सी राहत है। पर आप आज बातचीतें थोड़ी सी कम करांगा, कागज जका है, मेल जका है, और संदेश जका आपने व्हाट्सएप पर आया है भी आज शामिल करांगा। और जका भाई लोग आपने सजरा जुड़िया है तो भी मेल को जो पतो है वो नोट कर सके सा थे, नोट कर लियो, ताकि आने वाला कार्यक्रम में आपने मेल भी कर सको और बीमार जकी प्रतिक्रिया है बाबी मानस को बुधवार का दिन अगर मेल करना चाहो, या फिर अपने फरमाइशी जो को कार्यक्रम है गीता गजरो भी लिखना चाहो, तो आपने फरमाइश भी थी मानस को, तो मेल नोट करो सा AIR सूरतगढ़ चौपाल @gmail.com इन पर थे अपने हाथों हाथ मेल जकी है बा मानस को, और बा मारती पुगती हो जाएगी सा। पर आप एक भजन सुन लिया मोनी दिन की आवाज़ गवा, पछे आप कागज मेल और संदेश जका भी संभाला सा, लियो थे भी सुनो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा संदेश पहला था ने भजन सुनायो मोनी दीन की आवाज़ गमा और आपना ती आज बुधवार है तो मेल जका है बेबी पुग्या है और संदेश जका है बेबी आइडा है और कागज भी आज हूँ ले रहे हूँ। तो सैसु पहली आज आप की है कह मेल से शुरुआत कर देवा। तो वो पहलो मेल जो है वो आपना ती पुग्यो है गाँव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से और लिखे है वेद मिड्डा अलका मिड्डा और आ लिखे है रमेश्वर भाई थाने मोकली मोकली रामा श्यामा। बिल्कुल सा थाने भी मोकली मोकली रामा श्यामा और आगे भी यहाँ लिखे है कि ऊपर वालों थाने राजी खुशी और निरोग रखे है। बिल्कुल सा आ दुआ अपने मिड्डा साहब में थारे श्रोताओं के लिए सगड़ा के लिए करा कि पूरे

शुक्रवार ने के गीतार गजरो बड़ो दायो थारी प्रस्तुति लाजवाबी सा मोगलो सारो धनवा सा। और शनिवार ने के सजन भाई की प्रस्तुति में जानकारी और सौर ऊर्जा की जकी लगाने की जानकारी सुने बड़ी पसंद आई कहे। इन अलावा अपने कपास में कीटनाशकांग ऊपर भी जानकारी दी हरजिंदर सिंह जी का सुनने मिली तो भाभी बड़ी पसंद आई और किसान भैयान का बहुत लाभकारी साबित होएगी सब। बिल्कुल आपने अठो से कुछ जानकारी दीजिए ना वाह आपने लाभकारी हुए और सब फायदाड़ी हुए। आगा लिखा कि रविवार ने चौपाल में कृषि यंत्र और ड्रोन पर भी थी जानकारी सुनाई बड़ी अच्छी लगी और कीटनाशकों पर भी जिसकी जानकारी दी भाभी बड़ी दाई आई। और सोमवार ने कहा भूरू भाई की प्रस्तुति में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जानकारी दी बड़ी अच्छी लगी। और मंगलवार ने चौपाल में अपने भूरू भाई जो को है प्रस्तुति में जो को नींबू पौध पर जानकारी दी आम बात लिखी है कि बड़ी अच्छी लगी। और पूरी आकाशवाणी टीम ने कही थी मेहनत करने खातर घणो घणो धन्यवाद सा है ना। तो बड़ी अच्छी जानकारी की जी की बातें थी सुनी हो सी और थाने दाय आई तो वास्ते थारा मोकलो सारा धन्यवाद। और आपने भूरू भाई ती थारी जी की बात है वह पूगती होगी हो सी और सज्जन भाई भी अपना कार्यक्रम ले रहे तो बी दिन बंगी जी की जानकारी ही बातें अच्छी लगी इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद सा। आ कनवाणी रावसर सिंह अपने मेल मांडी है किचन श्याग और आ लिखी है कि कार्यक्रम जो है वो अच्छो लगे सा तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान जिशान खान भी अपने ती मेल मांडी है ए लिखियो है कि प्रोग्राम पेश करने वाला महारा का निशु घनी घनी रामा श्यामा। और बरसात हुआ का मौसम शुरू हो चुकी है और मेह का ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा और बाकी देखभाल भी बारम्बार करा। और आगा लिखे गीतारू गजरो जो को है बिंग माथे भजन है गाना है बेसुना बड़ा पसंद आ रहा है मौसम को जो को हाल है बाजार भाव है बिंग जी की जानकारी है हमारे मिलती रहे। बिल्कुल साहब अपने मोहम्मद साहब मौसम जो को है वो बरसात हुआ और ये बरसात का मौसम का माँ के है कि आप अगर रूख लगावानी तो बे आपा ने क्या है कि आने वाले टाइम का माँ बड़ा फायदेमंद होगा अपनी धरती के लिए बड़ा फायदेमंद होगा तो इन वास्ते अपन रूख जो कहे जरूर लगाना चाहिए सा। वो आपने मेल मांडे है लिखियो है बॉर्डर एरिया आकाशवाणी श्रोता संघ है रायसनगर से और आ लिखे समाज सेवी सुनील डाल सोनलाल जांगीड प्रवीण जी सरावगी नरसी सिंवर चेतन राम जी और जोशन जी वेद प्रकाश जी मिड्ढा धनराज जी भंबू और अंशा के बीकानेर से लक्षिता वर्मा भी है। हाँ तो आंगो जो को मेल है वो बिया तो नितबंदियों आवई है तो आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। और आगे भी थे जिकी प्रतिक्रिया है वह मानता रही हो सा आगे भी थारे मेल की जिकी उडीक है वह रहेगी सा। रूपाणा बिश्नोइया सिरसा हरियाणा से मेल मांडे है सूरजमल पाल टेलर भीम टेलर चिराग दुर्गा शक्ति और आलिखिया का आकाशवाणी सूरतगढ़ ने घनीन घनी रामा श्यामा और माने का बागड़ी भाषा में कमी बागड़ी भाषा में कविता लिखी है और एक कविताओं का मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में सुनाने की इच्छा रखा और एक फरमाइश भी है कि हर महीने का आखिरी रविवार ने कहा सिम खोल को कार्यक्रम रखियो जाए। बिल्कुल सर सह सुपेली थे बात पूछी है कि थे जिके अपने बागड़ी भाषा में राजस्थानी भाषा में कविता लिख रखी और भी आकाशवाणी में थे रिकॉर्ड करवाना चाहो और श्रोताओं ने सुनाना चाहो तो बिल्कुल अपने आकाशवाणी सूरतगढ़ गाँव में कोई भी एक दिन थे आगे जगह दिन छुट्टी को दिन ना हो तो 20 दिन आगे थे अपने जगह अधिकारी महोदय है बासू मिल सको अगर आकाशवाणी में पेश करने का लायक और रिकॉर्ड करने का लायक अगर थारी कविता हुई तो जरूर रिकॉर्ड होएगी सा है ना। कोई भी आपने कार्यक्रम जो को है वो जगह दिन छुट्टी ना हो और 20 दिन अगर आपने ऑफिस जो है वो खुल्लो है दफ्तर खुल्लो है तो 20 दिन थे आसको सा और थारी फरमाइश जिकी है वह हूँ नोट कर ली आखिरी रविवार ने या फिर कोई भी एक रविवार ने या कोई और बार ने आप कोई अंशिम खोल को जो कार्यक्रम में रखा और आपने जगह मोटा अधिकारी बांती आज की बात है वह पुगाशा सा मेल मांडियों वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो मेल पुग्यो है सादुल शहर से राम कुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड नितबंध्या श्रोता है एक चौपाल पत्रोत्तर कार्यक्रम पेश करता रामेश्वर भाई घनी घनी रामा श्यामा। बिल्कुल सर थारी रामा श्यामा तो हर बार की तरह आज भी मिलगी और थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा। अगर रिवार्ड साहब लिखे है कि बिया तो कहते जाने कि चौपाल कार्यक्रम का मैं नियमित सुना और प्रोग्राम बड़ो पसंद आने ला रहे है पिछले दिनों का गोपी राम जी गुदारा को लिखड़ो नाटक जान सुनो यानी बरात जो को है वो पूरों कौन सुन पाया नहीं इन दोबारा सुनाने की प्रार्थना करी है। बिल्कुल सा किन्ने अपना ब्रातगमा रिवार्ड साहब शामिल कौन हो सकाने है ना पर कोई बात नहीं आगे कार्यक्रम थे सुनता रहो थाने वो नाटक जो है जान जो है वो जरूर सुना से सा है ना बिया तो जान एक बार चढ़ने के बाद गमा की है करेणिया रेज है लेकिन फिर भी थारे वास्ते एक फिर उन जान चढ़ा से सा पिछले बुधवार ने का पत्र उत्र बड़ो खूबसूरत पेश करो सा है ना तो आना अच्छो लगे वास्ते थर

सर धन्यवाद। और आगा लिखिएगा आज फिर का नवीन सिसोदिया जी कौन है यानी तो वांगो का प्रोग्राम है इंतजार रहे सा अगला प्रोग्राम के लिए के बे आना चाहिए सा। तो आ बात नवीन जी ते पूग गई हो सी है ना बिया भी थाने बता दियो का नवीन जी जो कहे भी इन्हें काम कमताली को टेम चालना ला रहे है कि नहीं फंस रहा होशी और काम धंधो है जो कभी मौसम का संभालना भी जरूरी है रिवार्ड साहब। और अगाँ लिखे है कि महाराष्ट्र साधु शहर में अच्छी बारिश हुई है बिल्कुल धन्यवाद सा और बधाई हुए थाने कहे कि थोड़ी सी ठंडक वापरी हो सी और घर में का गुलगुला बनाया है गुड़ का बड़ा अच्छा लगा सा क्यों लियाड़ो लियाड़ करो थे रिवार साहब। बिल्कुल थारा जो का मीठा गुलगुला है वे खाओ और ई मौसम गमा की है का भोजन जो है वो बड़ो पौष्टिक खाना जरूरी है सही बदलता मौसम में जका खान पान है बना सुधारना जरूरी है और गुलगुला जका है और पकौड़ा जका है बे भी अभी मौसम गमा आलसीला मौसम में ज़्यादा फूट रहा ज़्यादा भाव है सा तो खाओ सा खाओ है ना मेल मांडियो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। लखवाली हेठ चूँ आपने ती मेल मांडी है मास्टर भंवर लाल कृष्णा सौरभ विशाल राजबाला ममता नव्या लक्षिता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा मुकना राम आ लिखिया का मारा हिवड़ेरी कोर है चौपाल कार्यक्रम और पेश का सुनी लगा ऐसा गीत भजन नाटक कहानी खेती बाड़ी की मौसम की जगह जानकारी है बाजार भावे भी बढ़िया लगे तो अगा रामाश्यामा लिखिया तो थाने भी मोकली सारी रामाश्यामा और थाने अच्छो लगे इन वास्ते थारो मोकलो सारो धनवाद सा। गाँव गंदेली रावसर शो अपना ती मेल मंडियो है लिखन वाला है पालाराम स्याग रमेश मोनिका संदीप भावना और अगर माता जी है बिमला स्याग और पोतो है राघव सिंह। एक है थारे कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा कराना बीती कम है अगा लिखे कार्यक्रम पेश करने वाला महारा कहानी से घनी घनी रामा श्यामा और थारो जो को कार्यक्रम है वो बड़ो अच्छो है और इनमें जितनी भी जानकारी है दो वे बड़ी बढ़िया लगे और सुनो सुना जो भजन है वे भी मन है थे सुनाओ तो वे बढ़िया लगे ऐसा तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो और सुन गए जी अगला कार्यक्रम में प्रतिक्रिया जी के बाद जरूर मांडियो सा और कार्यक्रम थाना अच्छो लगे इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद सा। मुकलावा सिंह मदन बरोड मंजूबाला प्रीति बरोड दिव्य बरोड हितेश बरोड कामना बरोड लुभानी बरोड आरती बरोड अजय पेंटर मुकेश पेंटर और राजू पेंटर अंगा माऊ बापू है हनुमान बरोड और इमृति देवी है ना। तो बरोड साहब थारा सिंह एक प्रार्थना है कि थे के बात लिखी है रामा श्यामा लिखी है साहब बिल्कुल थारी रामा श्यामा जी की वह पूर्ति होगी और थाना भी मारा पूरा आकाशवाणी परिवार का निशु घणी घणी रामा श्यामा पर प्रतिक्रिया आपने बुधवार का दिन जरूर मांडे करो सा कार्यक्रम के थाने किशोक लागे कुकर लागे किया लागे के बदलाव के सुझाव थारा है तो भी मांडे करो सा है ना थोड़ा सा फूटरा लागे अपने फरमाइशी जी को कार्यक्रम में भी थे ना मान सको फरमाइश मान सको। ओ अपने मेल पुग्यू है गाँव उम्मीवाड़ा सिंह नौरंग सुथार विष्णु सुथार नीरज सुथार योगिता सुथार जया सुथार सुमन सुथार गीता रो गजरो जो को है वो आना अच्छो लगे और आकाशवाणी का जितना भी कार्यक्रम है भी के माने बढ़िया लगे सा तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। ओ मेल पुगे है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह और आ लिखियो है के माने कोई गीत जरूर सुनाइयो सा तो गीत तो बिया तो अपने भजन सुनाई दियो कार्यक्रम सुनता रहो थाने जरूर गीत जो है वो भी सुनने मिलेगा सा। अब आप बात करें कुछ कागज का है भी अपना ती पुगिड़ा है गाम दौलतपुरा श्री गंगानगर सिंह सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमंत भी लिखे है कि एक कार्यक्रम जो है कहते हैं पेश करो बड़ा बढ़िया लगे अब आता लिखिए सा तो अंगो भी मोगलो सर धन्यवाद। बसंत बिहार सुरतगढ़ से अपना ती नितमंदिया सरोचा जगदीश सैनी भानवी भानुशाली और तनिषा सैनी भी लिखे है एक है कार्यक्रम जो है वो मैंने अच्छो लगे सा तो अंगो भी मोगलो सर धन्यवाद। वो अपना कागज मंडी है गांव गोविंदपुरा 818 जीजी जी हूँ और 18 जीजी वाला लिखेगा लिखने वाला है खुशीराम रणवा मोहनलाल महला दिलीप नाथ और कानाराम हनुमान खेरवा ये लिखा है कि दो आवाज़ में चौपाल का बड़ो पसंद आवे माने और इमान नया नया भजन जो है रागणी जी की अभी भी सुनाया करो सा तो हाँ रामा श्यामा भी लिखी है बिल्कुल अपने कार्यक्रम दो दो आवाज़ में कदी कदासी हुआ भी है और थाना पसंद आवे इन वास्ते थारो मोकलो सारो धनवाद सा। मसीतां डब वाली सियूं दर्शन लोट सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी और सागर और हनी लोट भी अपने ती कागज मांडियो ऐसा आम भी कह कार्यक्रम जो है वो अच्छो लगे इति बात लिखी ऐसा तो लोट साहब कुछ प्रतिक्रिया जिकी है वह जरूर मांडी करो सा है ना थारो हाथ थोड़ी पकड़े कोई तो इन वास्ते अपने जिकी प्रतिक्रिया को कहण कौन ला रहे का अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाई लिखो या फिर बुराई लिखो लेकिन थाने कार्यक्रम किशो चालन ला रहे है बिंग बारे में थोड़ी सी बता दे करो सा तो पतो ला जाए माने भी है ना और अपना कागज मांडियो वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। अपने ती कागज पुग्यू है नई आबादी अभोर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी साहिल सोनी अमन सोनी करण सोनी महिंद्रा बिश्नोई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सर, संदेश उपेला थाने आपने गीत सुने हो और अपने ती एक मेल और पुगेड़ी है और आ मेल पुगी है आपने ब्रह्म सर रावसर सान मानगढ़ छू और लिखने वाला है कृष्ण राम शर्मा। ये लिखी है कै थारो जो को आकाशवाणी सुरतगढ़ को नियमित श्रोता हूँ और रोजाना कार्यक्रम जो है वो चौपाल सुनूँ और इनमें जितनी भी थे जानकारियाँ दियो वे बड़ी फायदेमंद है और इन अलावा का वो मेल जो है कहूँ मैं और मेरे दादाजी जो है बंग सागर अड़के लिखी और बंग बे जका दादाजी है कह थारो जो को कार्यक्रम वो रोजाना सुना और बाँ रामा श्यामा भेजिए। तो बिल्कुल थाने भी मोकली सारी रामा श्यामा और दादाजी ने भी मारा कने छू मोकली मोकली रामा श्यामा सा आगे भी थे मेल जका है भी मानता रही सा। वो मेल अपना ती पुग्यू है ब्यासी आर बी राइसनगर छू चेतराम सारसवा नौरंगराम सारसवा प्रदीप सारसवा ज्योति सारसवा ममता सारसवा नानू देवी सारसवा एक कार्यक्रम पेश करने वाला मारा कने छू घनी घनी रामा श्यामा और रामेश्वर भाई जी का आज तो नवीन जी को नहीं दिखा था रस आगे आज नवीन जी आया को नहीं चेतन जी है ना पर आगे कार्यक्रम सुनता रहियो जरूर आसी और आगे आ लिखे रामेश्वर भाई जी थे कि प्रोग्राम में दो या तीन आवाज़ हम पेश करो तो बड़ो जीसुर हो जाए आकाशवाणी सुरतगढ़ का मैं रोजाना सुना माना बड़ो अच्छो लगे सुन के जीसुर हो जाए चौपाल कार्यक्रम में मैं लाइव सुन ला रहा हाँ मारो मेल जरूर शामिल करियो सा। बिल्कुल थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। वो मेल अपना ती पुग्यो है नोर जिला हनुमानगढ़ छू नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार और ये लिखियो है कै राम राम सा। बिल्कुल थाने भी मोकली सारे रामा श्यामा अगां लिखियो है कि चौपाल में रोजाना सुना बड़ो अच्छो लगन आ रो है आकाशवाणी सुरतगढ़ छू का नाटक झलकी वार्ता साक्षात्कार जितना भी थे सुनाओ बे भी मने बड़ा दाया वैसा। आगे भी यहाँ लिखियो कि राजस्थानी फिल्मी गीतों पर आधारित एक प्रोग्राम जो है वो सुबह की सभा में 30 मिनट को करनी हो चालू कर दो सा थारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल सा अपनी जकी बात है बा थारी बात जकी है बा अपने जरूर पूर्ति कर दे सा है ना आ बात हूँ लिख ली। अपना ती संदेश जका है बेबी पुगिड़े है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रत्नामाला सुरलकर आ लिखियो कि चौपाल कार्यक्रम जो है वो बढ़िया चलन आ रही है खेती बाड़ी की जितनी भी जानकारियां दियो बे बड़ी फायदे

मंद है। और इंग अलावा का सरकार की जी योजना है वे बड़ी तेज की जानकारी आती वे बड़ी फायदेमंद हुए। और कभी आकाशवाणी सूरतगढ़ को चौपाल कार्यक्रम जो है वो नियमित रूप से सुना और इंग मा के थे माने घणो फायदो मिल्यो ऐसा। बिल्कुल थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। ओ संदेश आपने ती बड़ो लंबो चौड़ो मांडर भेजियो है सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, परमजोत मिशन और बीबी जानवी का। ये लिखे कि चौपाल पेश करना महारा कानी से घनी घनी रामा श्यामा। पिछलो पत्र उत्र सुनो बड़ो बढ़िया लगे माँ लोकगीत लोक भजन जो है बेबी बड़ा पसंद आया सा। शुक्रवार ने गीतारो गजरक माँ लोक भजन और लोकगीत का सुनाया बेबी पसंद आया। बाकी दिन हम चौपाल में कृषि संबंधी जी की जानकारी है, बाजार भाव है, पशुपालन है संबंधी जी की जानकारियाँ दियो बेबी माने पसंद आवे। और मौसम की जी की जानकारी या गूच माने मिल जाए तो इनको भी माने बड़ो फायदो हुआ सा। आगे भी यहाँ लिखे फसलों का माँ का निराई गुड़ाई को जो छिड़काव बीज की जानकारी है बा भी साझा करे करो। तो बिल्कुल साहब निराई गुड़ाई को टेम है अपना छांटा छिड़को हो गया तो कचरो जो है खरपतवार जो है वो भी हुआ गो। और रही बात छिड़काव की तो अपना कोई विशेषज्ञ है बन बुला के अपना आज जानकारी जी किया थर सा जरूर साझा करांगा सा। तो कार्यक्रम सुनता रहे करो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद। ओ अपने संदेश पुग्यो है और लिखने वाला है चंडीगढ़ से सतीश नेजा और बिमला अनेजा। ये नियमित श्रोता है लिखे राम राम रामेश्वर भाई। और आगा लिखे है कि चौपाल कार्यक्रम बड़ो पसंद आने ला रहे है और श्रोता इनका बड़ी शिद्दत से सुन ला रहे है। किसान भाइयांगी का फसल को रख रखाव जो को है बिंग जी की सटीक जानकारी है इनके साथ मंडियांगो या फिर फसलों को जो को बाजार भाव जो को है वो भी थे मारती पुगतो करो तो वो भी माना पसंद आवे। और पशुओं की जी की देखभाल है मौसम की जी की जानकारी जी की बात है देने ला रहे हो बड़ी लाभदायक है। फसलों के लिए विशेषज्ञ बुला के और बाँसू जानकारी अंदर रहो वह भी बहुत बढ़िया है। और इनके अलावा किसानों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होने आ रही है जी की जानकारियाँ हैं। आगे भी अपने अनेजा साहब लिखे है कि मानसून में फसलों पर फूल लाला जो का पौधा है वहाँ पर किसी दवाई को छिड़काव करा तो इनके लिए दवाई गो को छिड़काव जो है बा जानकारी। बिल्कुल आपने जो विशेषज्ञ है ब्यास ही और थारिज की बात है सुझाव जो है थारो प्रश्न जो है वो लिख लियो नेजा साहब और बाँसू जानकारी जो की बा जरूर थाने दिरास्या कार्यक्रम सुनता रहे करो साहब। आगे भी यहाँ लिखे है कि अपना राजस्थान के कल्चर और अट्ठे की धरती से लगाव हो चुकी है वो प्रोग्राम सुन सुनगी तो बिल्कुल श्रोता आज का है भी बड़ा सुधी श्रोता है। और आपनों राजस्थानी कार्यक्रम मैनेजर साहब में आपने संदेश मांडियो इन वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। ओम संदेश पुग्य है 58 NP राइसनगर से लिखने वाला सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी मलखट, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार मलखट, मीनाक्षी और सिंगा मलखटा सागे लिखे कार्यक्रम का चौपाल कार्यक्रम बड़ो अच्छा चलान आ रहे है। और प्रस्तुतकर्ता ने कह दिल से शुक्रिया और इंगमा नाटक जो टोडियो है वो जरूर सुनाओ सा। बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो थाने जरूर नाटक टोडियो सुनने मिलेगो और कार्यक्रम अच्छा लगे इन वास्ते थारो मोकलो सारा धन्यवाद। ओ 15 PS शू अपने सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्शपाल जोशन मेलबर्न और रोबन सिंह जोशन वेंकुवर शू आप लिखे कि एक एक चौपाल कार्यक्रम पेश करता ना महारा कानी शू गणिन गणी रामा श्यामा। कार्यक्रम माने बड़ो पसंद आ रहा है एक मा नाटक गीत भजन बाजार भाव भी माने बड़ा पसंद आवे ऐसा। गांव बनवाला हनुमता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका अंग माता जी विद्या देवी और सगड़ो मायल परिवार ए भी कह के अपने कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगा। पिछलो कार्यक्रम बड़ो पसंद आयो राजस्थानी भाषा का माँ वो कार्यक्रम जो है वो बढ़िया लगा ऐसा। और वो अपने संदेश पुगे लिखने वाले है भादरा अनूप शेर सिंह, गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, साहिल राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता मीतू किनू, मदन लाल शर्मा, फुसाराम मील, महावीर लोरा। एक 18 तारीख ने कह कार्यक्रम सुप्रभात में कह नवीन जी, डॉक्टर लीला दर्द जी सू योग भर हम जानकारी जी की दराई बाने पसंद आई सा। तो थारो मोकलो सारो धन्यवाद। और आगा लिखे कि बरसात होगी तो मैं कह क्या थे माना बताओ क्या मूंग और मोटी जी की बिजाई को टेम है या कोनी। बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो साथ इनकी भी जानकारी अपना तड़के जरूर दराशियाँ या फिर आने वाले कार्यक्रम में थाने जरूर सुनने मिले किसा। गांव हीरोवाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, हिमांशु गुदारा, इंदु पार्वती, श्रवण रेणुआ, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, करोड़ीवाल, सुरेंद्र भादु, ए लिखे अगर राम राम रामेश्वर भाई थारू कार्यक्रम बड़ो पसंद आने ला रही है और चौपाल कार्यक्रम में रोजाना सुना। पिछले हफ्ता चौपाल में खेती से संबंधित जितनी भी थे जानकारी दी बाजार भाव और मौसम की जी जानकारी दी वह बड़ी काम आ गई। और शुक्रवार ने चौपाल में गीतार गजरों जो को पेश करे भी लोकगीत जो है वे सुनाया और महारी जी की माता जी है गुड्डी देवी ने बड़ा बढ़िया पसंद लग गया अच्छा लग गया। और आगा लिखे कि अपने जगह मोटरसाइकिल रिपेयर का काम करना का जो प्रोग्राम की समीक्षा अच्छा बिल्कुल आपने के काम धंधा में फंस रहे हो सा है ना तो प्रतिक्रिया थी अच्छी लिखी है। और संदेश मांडियो वास्ते थारो मोकलो सारो धन्यवाद। ओ आपने संदेश पुग्यो है नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़, साई गायकवाड़ ए भी का कार्यक्रम जो वो पसंद आ रहा सा। संदेश पुग्यो है अमरपुरा जालूखाड़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति ए लिखे कि नो

तारीख ने कहा नाटक जान सुनियो बड़ो बढ़िया लाग्यो, और रामेश्वर भाई जी चौपाल पेश करना को जो को अंदाज है वो बड़ो मनसा भाई। अपने मनसा का कुछ कहे भी कार्यक्रम दिन था और बांगी हो आज अल्तरा लागे सा, तो थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो सा। वो अपना संदेश पुग्यो है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार, ए भी का कार्यक्रम जो है माना पसंद आ रहे हैं। मौसम संबंधी जानकारी जी की बात बढ़िया लगे, और टेन टेम पर का फसल में निराई गुड़ाई जो को काम है, दवाई को जो छिड़काव है, बिंग की जानकारियाँ दो, बे भी माने बढ़िया लगा सा और काम आ रही है। संदेश पुग्यो है अपने गाँव ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमावन और विनोद खां, ए भी कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है सा। संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव भी लिखे सा। एक कह माने का सब्जी लगाने के बारे में कोई घरांग में सब्जी लगाने के बारे में माथी जानकारी दे रहा सा। बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो, कोई अपना जगह जाने जान किसान होसी या फिर विशेषज्ञ जगह भी होसी तो भी बाँसू थाना जानकारी जी किया जरूर दे रहा सा। कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, हाँ रल मिल के लिखे है। एक है कार्यक्रम जो का मैं पूरा परिवार का सागे सुना और बड़ो पसंद आ रहा है सा, तो थारो भी मोकलो सारो धन्यवाद। जिला नादेड़ यतला महाराष्ट्र से हूँ शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी तृप्ति और दुर्गेश्वी जायसवाल, ए भी का कार्यक्रम जो का वो पसंद आवे, और रामाश्यामा लिखे तो थाने भी मोकली सारी रामाश्यामा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और बंटी बबली वर्मा भी लिखे है। एक कार्यक्रम जो वो पसंद आ रहा सा, और वो संदेश पुग्यो है टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा को, एक कार्यक्रम जो वो मैंने पसंद आवे सा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार भी कार्यक्रम की बधाई लिखी है, और वो संदेश पुग्यो है मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, और ये लिखियो है का कार्यक्रम जो है वो मैं रोजाना सुना बड़ो पसंद आ रहा है, और राजस्थानी भाषा में कह थे के फसलों के साल संभाल किया करो बिंग बारे में जी की जानकारी तो बढ़िया लगन आ रही है, तो अंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद। संदेश पुग्यो है गांव नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा को, एक कार्यक्रम पेश करना महारा कर घनी घनी रामा श्यामा, मैं का रोजाना कार्यक्रम जो है वो सुना इम थे जानकारियाँ दियो जीती भी बेमाने पसंद आ रही है सा। अशोक कुमार सोनियो सुरतगढ़ से अपना ते संदेश मांडियो है, एक है हार्वेस्टिंग और रोग दवाई की जानकारी है, बे बीज रोपण से लेगे और हार्वेस्टिंग और रोग दवाई तक की जी की जानकारी है, बे माने देव सा। बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो सा, थाना जानकारी जी की बात जरूर सुनने मिलेगी। ग्राम कोलासर तालुका नादूर महाराष्ट्र से प्रमोद वांगड़े भी अपना ते लिखे है, ये कार्यक्रम जो है वो पसंद कर ला रहे हैं, और वो संदेश पुग्यो है अपना ते लिखने वाला है सालपुरा जिला बारा श्यू राज सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ए भी का कार्यक्रम में जितने भी थे गीत भजन सुनाओ या फसलों बारे में जी की जानकारियाँ दो भी माने पसंद आ रही है, और संदेश पुग्यो है अपने अभिजीत गुणवाकर राही मेहर नगर उम्रखेड़ा महाराष्ट्र से, ए भी का कार्यक्रम जो का वो पसंद आ रही है सा। अब संदेश की बात करा, वो संदेश अपना ती लिखर भेजो ऐसा संदीप सोनगरा, सोमल कराती, प्राची और लिखियो हाँ चूरू राजस्थान से, एक कार्यक्रम पेश करना वाला महारा कन्या घनी घनी रामा श्यामा, कार्यक्रम कह रोजाना सुना इनमें थे जितनी भी जानकारी दो भी मने पसंद आ रही है। देसी गोबर की जी की खाद के बारे में जानकारी और फसल निकालने के लिए पहला ट्रैक्टर थ्रेसर से सावधानी के बारे में जानकारी दो सा। बिल्कुल आपने कार्यक्रम में ये जानकारी जी के भी देता रहा सा, है ना, कार्यक्रम सुनता रहो थाना और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जी के भी सुनने मिलेगी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंत राज भोजने, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से रल मिल के लिखियो है, और ये कार्यक्रम की बढ़ाई लिखी है सा, तो आने भी मोकलो सारो धन्यवाद। और वो आपने संदेश पुग्यो है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से लिखियो है, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, ए भी का कार्यक्रम जो है वो माने पसंद आ रहा है, मैं जितनी भी थी जानकारी दी भाई माने बढ़िया लगे सा, तो अंगो भी आप मोकलो सारो धन्यवाद करा सा, और कार्यक्रम जो है वो नियमित सुनता रहो, और आगे भी कार्यक्रम में थारे मेलगी संदेशा की जी की उड़ी के बार रहेगी सा। तो श्रोताओं ने एक बार फिर मैं कैसे सा कि आपने बरसात को मौसम है और इंगमा की है कि थोड़ा सा रूख जगह है बे लगाना काम जरूर करियो सा, अब जगह रूख लगाएड़ा होशी बे आने वाले टाइम में छायादार वृक्ष बन जाएगा ना, तो अपना आज को कार्यक्रम इतो ही है, टेम जो है वो एकदम पंखा लगा के उड़न ला रहे है, और मैं चलूँ और थारा भाई रामेश्वर ने दियो गया राम राम सा राम राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। संयोजक थे नवीन सिसोदिया, कार्यक्रम के प्रस्तोता थे रमेश चावरिया। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

पहला गीत सुनिए, आनंद राज आनंद की आवाज में। फिल्म का नाम है हद कर दी आपने।

और लीजिए सुनिए पंकज उदास साधना सरगम की आवाजों में मोहरा फिल्म का ये गीत।

0: 10 बजे। हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर और रात

राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के

0: जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया। जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: 8:00

15 मिनट हो चुके हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है मैं ऐसा ही।

15 मिनट हो चुके हैं, आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है मैं ऐसा ही हूं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए डर फिल्म का गीत, आवाज उदित नारायण की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए आतिफ असलम की आवाज में रेस फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ और फिल्मी नगमे सुनिएगा रात 10 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने चीन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व स्क्वैश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, 215 स्वर्ण पदक दांव पर। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 श्रृंखला कल से शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्कॉच से, जहां अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के युवा स्कॉच खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्कॉच जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को आसानी से 11-3, 11-1, 11-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अगले राउंड में अनाहत का सामना मलेशिया की डोइस ये सेन ली से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में आर्यवीर दीवान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को लगातार गेम में 11-4, 11-3, 11-3 से हराया। अगले राउंड में आर्यवीर का मुकाबला अमरीका के यासीन शालाबी से होगा। हालांकि गुरवीर सिंह, युषा नफीस, सानवी कलंकी, रुद्र सिंह और अनिका दुबे को हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दूसरे दिन के मुकाबले में कई रोमांचक नतीजे भी देखने को मिले। ब्राजील की लारा सिल्वा ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम करते हुए अंतिम 16 में जगह बनाई। मलेशिया की हरलीन टेन ने भी कनाडा की विंग काई ग्लेडिस हो के खिलाफ 2-1 से पीछे रहने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इसके अलावा इंग्लैंड के डाइल्टन रॉबर्ट्स, हांगकांग की हेलेन टैंग, सऊदी अरब के मोहम्मद अल नासफान और मिस्र की हबीबा रिज ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। बेल्जियम की सवाना मोक्सहम ने भारत की सानवी कलंकी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं तलवारबाजी की ओर, जहां तनिष्का और प्राची ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
2: भारतीय तलवारबाज तनिष्का खत्री और प्राची लोहान इतिहास रचते हुए आज सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में 64 खिलाड़ियों के मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला एपी खिलाड़ी बनी। 9 दिवसीय चैंपियनशिप के पहले दिन प्रतिस्पर्धा करते हुए तनिष्का और प्राची ने राउंड रोबिन पूल और शुरुआती एलिमिनेशन दौर की बाधा को पार करते हुए मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह बनाई। ये दोनों अब 25 जुलाई को 64 खिलाड़ियों के एलिमिनेशन ड्रॉ में चुनौती पेश करेंगी, जहां उनका लक्ष्य शीर्ष 32 खिलाड़ियों में जगह बनाना होगा। वहीं पुरुष व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा में सचिन 107वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहे। आदित्य ने 137वां, सीनासम हिमांश सिंह ने 143वां और तेजस मनोज पाटिल ने 149वां स्थान हासिल किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स टीम।
0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, ये जो टूर्नामेंट है चाइना ओपन, रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, तो कैसा रहा आज भारतीय खिलाड़ियों का दिन?
3: जी प्रशांत, अगर आज की बात करें तो

0: भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिन काफी मिला जुला रहा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता जो है पीवी सिंधु, उन्होंने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को हरा दिया है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले पीवी सिंधु ने जापान ओपन भी जीता था और अपना 2 साल का खिताबी सूखा है वो भी खत्म किया था। उन्होंने 56 मिनट तक चले मुकाबले में उन्नति को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। हालांकि शुरुआत में उन्नति ने उनको काफ़ी टक्कर दी, मैच 1-1 की बराबरी पर था और तीसरे गेम में सिंधु ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहले उन्होंने स्कोर को 6-3, फिर 10-5, फिर 15-8 तक पहुँचाया और अंत में जो सेट था, जो गेम था, उसको 21-10 से जीतकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल का प्रदर्शन किया। अगर मेन सिंगल्स की बात करें तो आयुष शेट्टी ने आज एक बहुत बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने 11वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को जो है हरा दिया है। वो पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने फरहान को 17-21, 21-5 और 21-17 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये मुकाबला करीब 57 मिनट चला। शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ी अपने नियंत्रण में थे लेकिन अंत में धैर्य उन्होंने बनाए रखा और मुकाबले में जीत दर्ज की। हालांकि अब सभी की निगाहें जो हैं वो जापान के युशी तानका से जो मुकाबला चल रहा है लक्ष्य का उस पर है।
1: लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है पीवी सिंधु ने, भी हाल ही में जापान ओपन का खिताब भी जीता है और कल उनका मुकाबला किन से होगा विशेष?
0: प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना जो है वो चेन यूफेई से होगा और सिंधु ने पिछले सप्ताह जो है सेमीफाइनल में इनको सीधे गेमों में हराया था और दोनों खिलाड़ियों के बीच लगभग 8-7 की जो मामूली बढ़त है वो चेन के पास है।
1: तो सभी प्रशंसकों की निगाहें होंगी जिस प्रकार का प्रदर्शन पीवी सिंधु का जापान ओपन में रहा, चीन ओपन में भी वैसा ही प्रदर्शन करें और इस खिताब को भी अपने नाम करें। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। प्रतियोगिता में 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें 215 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। तो कल किन भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी नजर, बता रही हैं जागृति अपनी रिपोर्ट में।
2: भारत राष्ट्रमंडल खेलों में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है जिसमें उसके 124 एथलीट्स मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 8 एथलीट्स सामान्य खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में पदक के लिए मुकाबला करते नजर आएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल इवेंट से करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यादगार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने और इतिहास रचने के बाद टीम राष्ट्रमंडल खेल 2026 में एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी, सैकिया और रूपा रानी टिर्की ने महिला फोर्स इवेंट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था जो लॉन बॉल में भारत का पहला पदक था। इसके अलावा सुनील बहादुर, चंदन सिंह, नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष फोर्स टीम ने रजत पदक अपने नाम किया था। पिछली बार भारत पुरुष पेयर्स इवेंट में भी पदक जीतने के करीब पहुंचा था। इस बार एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग और पैरा वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स और पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलों में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें संस्करण में कल एक रोमांचक मुकाबले में HVR कोलकाता थंडर ब्लूट्स ने यू मुंबा टीटी की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए 8-7 से जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद यू मुंबा ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके बेहतर गेम काउंट और अनुकूल समीकरणों ने कोलकाता और डेम्पो गोवा चैलेंजर्स के साथ उनके क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित किया। कोलकाता की तनिषा कोटेचा ने अन्ना हर्सी को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जेंग जियान ने आखिरी मैच के निर्णायक गेम में संयम बनाए रख हुए जीत हासिल की। इस नतीजे ने लीग के आखिरी दो मुकाबलों से पहले ही दोनों टीमों का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना तय कर दिया। कोलकाता ने एडवर्ड आयोनेस्कू के जरिए अच्छी शुरुआत की। उन्होंने एक गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मानुष शाह को 9-11, 11-8, 11-7 से हराया। इसके बाद तनिषा कोटेचा ने सीजन का बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अजय रही अन्ना हर्सी को सीधे गेम में 11-6, 11-4, 11-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यू मुंबा ने मिक्स्ड डबल्स में वापसी की। मानुष

0: और हर्षी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद अंकुर भट्टाचार्य और तनिषा को 3 गेम में 8-11, 11-4, 11-7 से हराकर डिफेंडिंग चैंपियंस को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद फ्रांस के लिलियन बारडेट ने एक और कड़े मुकाबले में अंकुर को 3 गेम में 11-9, 11-8, 6-11 से हराकर यू मुम्बा को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि नित्याश्री मणि ने शुरुआती 2 गेम में जियान को 11-10, 11-5 से हराकर मुकाबला 7-7 से बराबर कर दिया। इसके बाद सब कुछ निर्णायक अंतिम गेम पर आ टिका। दबाव के बीच जियान ने शानदार वापसी करते हुए 11-5 से जीत दर्ज की और कोलकाता को मुकाबला जिता दिया। इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। तनिषा को इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई चुना गया, जबकि बारडेट ने मैच IQ प्लेयर और फॉरेन प्लेयर ऑफ द टाई दोनों पुरस्कार जीते। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच कल जिम्बाब्वे के हरारे में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 4:30 बजे से होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 25 और तीसरा 26 जुलाई को होगा। मुकाबले से पहले युवा वैभव सूर्यवंशी ने इस मैदान से जुड़ी अपनी सुनहरी यादों को साझा किया।
2: काफी मेमोरेबल ग्राउंड है मेरे लिए। अभी हम 4 महीने पहले U19 का वर्ल्ड कप यहाँ पे खेले थे और जीते थे, तो काफी स्पेशल ग्राउंड। पिचेस और जो भी कंडीशन है के बारे में काफी आइडिया लगा था उस टाइम पे भी, तो ट्राई करूंगा जो मुझे आइडिया लगा है उसको मैच में अप्लाई करने का और अच्छा करने का। जो प्रैक्टिस में करते आ रहा उसको बैक करूंगा, जो मेरा गेम है उसको ट्राई करूंगा बैक करने को, और टीम के लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ गेम में वो देने को ट्राई करूँ। और इस ग्राउंड पे मैंने 2 मैच खेले थे, दोनों काफी अच्छा गया था। मैं करूंगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना। ऑब्वियस सा बात है, जो भी चाहिए कोचेस अवेलेबल करा रहे हैं और जो भी मुझे प्रैक्टिस चाहिए वो मुझे मिला और काफी अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस भी है, वही प्रोसेस फॉलो करना है और अच्छे से 100% देना है टीम के लिए बस।
1: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर दोनों T20 श्रृंखला गंवाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर आखिरकार बतौर कप्तान भारत को पहली जीत दिलाना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 0-2 से गंवाई। इसके बाद इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मुकाबलों के T20 सीरीज में भारत को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। अय्यर ने सभी 7 मैच में टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की, लेकिन एक भी मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर सके। और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच वर्ष 2010 से अब तक कुल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा। भारत ने 11 मैच अपने नाम किए, जबकि जिम्बाब्वे 13 मैच जीत चुका है। और अब इस श्रृंखला में नए कप्तान श्रेयस अय्यर अपना पहला मुकाबला जीतना चाहेंगे। वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा के साथ उनके नेतृत्व में घरेलू उम्मीदों को कायम रखना चाहेगा। उधर अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह को अफगानिस्तान का नया टेस्ट और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्ला गुरबाज को दोनों फॉर्मेट में उप कप्तान नियुक्त करने की पुष्टि की है। रहमत शाह बतौर कप्तान हशमतुल्ला शहीदी की जगह लेंगे। शहीदी ने अफगानिस्तान के वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी से आज इस्तीफा दे दिया। रहमत और गुरबाज की नई नेतृत्व जोड़ी अगस्त में अफगानिस्तान के आने वाले आयरलैंड दौरे के दौरान आधिकारिक रूप से कमान संभालेंगे। सीरीज में 5 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। उधर ICC ने आज एक दिवसीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शीर्ष पर पहुंचने से महज 1 पॉइंट दूर है। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हंगझोऊ में मेजबान चीन ने आज ISSF विश्व कप के पहले दिन दबदबा बनाते हुए दोनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आज का दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। भारत का कोई भी निशानेबाज पदक नहीं जीत सका। शुरुआत में ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में से कोई भी निशानेबाज क्वालिफिकेशन चरण पार नहीं कर सका। सुरुचि इंदर सिंह और केदारलिंग उचगांगे की जोड़ी ने कुल 577 अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया। वहीं सैन्यम और कमलजीत ने भी कुल 577 अंक बनाए, लेकिन उन्हें 11वें स्थान से संतोष करना पड़ा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा

0: उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
5: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के

0: नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के

0: समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जगजीत सिंह के गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है।

0: है तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 सिटीज पर आधारित है या Tier 3 सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और

0: 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव गांव से थोड़ा आगे हम जाए, जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी जब बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में, और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम, जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें, या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं, कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, और उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती, जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक, मार्केट लिंकेज तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है, और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है,
1: जी
0: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग
1: जी
0: इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिन किस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं, और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का, और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा, एक तरीके से एक ये स्कीम बनी, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जा करके जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो

0: उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7% 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में।
1: जी
2: जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा अरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में, हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूम कर आइए आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।

0: में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहाँ मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है मुझे लगता है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कंपीट कर सकते हैं क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले, तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है। और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई

0: आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारे नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है। तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही है। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में, ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है, तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मानता, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडाप्ट कर लिया। तो ये अडाप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था आपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप चौगुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहाँ वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें। उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सिर्फ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को

0: कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
1: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
0: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के एक कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं, आइए सुने फिल्म संगीत।

सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और भी खूबसूरत होती चली जाती हैं। किसी की एक मुस्कान, एक नज़र और एक छोटी सी बात बरसों तक दिल में गूंजती रहती है। ऐसे ही अनमोल एहसासों को स्वर देता है ये सदाबहार गीत। कि वो सामने थे तो दिल को करार था कितना, वो दूर क्या हुए मौसम बदल गया कितना, हम आज भी उसी मोड़ पर ठहरे हैं जहां कभी उनका इंतजार था कितना।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त की धूप में भी नहीं सूखते। यादों की नमी उन्हें हमेशा ताज़ा रखती है। यही एहसास इस गीत में भी है कि कुछ तो हवाओं में आज तेरी खुशबू होगी, मेरी तन्हाई में फिर तेरी आरजू होगी। यूं ही नहीं जागती है आंखें सारी रात, किसी याद की चुपके से जुस्तजू होगी।

दोस्तों, मोहब्बत का भी अपना एक मौसम होता है। जब दिल में किसी का नाम पहली बार दस्तक देता है तो हर नज़ारा हसीन लगने लगता है। हवाएं भी कोई संदेश लेकर आती हुई महसूस होती हैं और फूलों की खुशबू में भी किसी की आहट सुनाई देती है। मोहब्बत की फिजाओं में बहारें मुस्कुराती हैं, किसी के साथ चलने से राहें जगमगाती हैं। जमा होता है जब दिल प्यार की रंगीन दुनिया में, धड़कनों की धुनें भी गीत बनकर गुनगुनाती हैं।

दोस्तों, मिलन खुशकिस्मती है, मगर जुदाई भी मोहब्बत की एक सच्चाई है। जो प्रेम दूरी में भी जिंदा रहे, वही असली प्रेम कहलाता है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और दिल की वीरान गली में तेरी आहट अब भी है, हम तेरी राह तकेंगे उम्र भर होने तक।

दोस्तों, दिल देने से पहले हर कोई सोचता है, लेकिन जब दिल सचमुच किसी का हो जाता है तब सोचने की गुंजाइश नहीं रहती। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। दिल जिसे अपना बना ले वही दुनिया बन जाए, फिर किसी और को दिल से भुलाए न बने।

0: दिल उसे दो जा जा दे दे जा उसे दो जा दे।
1: साथियों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अब जो गीत आप सुनेंगे इसमें प्रेम की मासूमियत भी है, मिलने की चाहत भी है और अपने प्रिय के साथ पूरी जिंदगी बिताने का एक खूबसूरत सपना भी। जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगने लगे, तब मन बार बार उसी का नाम पुकारता है। हर सुबह

उसकी याद से शुरू होती है और हर शाम उसके ख्यालों में ढल जाती है। किशोर कुमार की मखमली आवाज में सजा ये गीत प्रेम की उसी मीठी तड़प और खूबसूरत चाहत का आईना है कि तेरा नाम लबों पर आए तो दुआ बन जाए, तेरी याद दिल में उतरे तो अदा बन जाए। इतनी शिद्दत से चाहा है हमने तुझको कि तेरा जिक्र भी हो तो वफा बन जाए।

दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में मेहमान बनकर आते हैं और याद बनकर हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं, कि कभी यूं भी मिले

आपकी मुलाकात याद रहे, लब खामोश रहें और हर बात याद रहे। सफ़र छोटा ही सही मगर इतना हो असर, बिछड़ने के बाद भी वो रात याद रहे।

0: दोस्तों, प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये किसी नियम, किसी तर्क और किसी सीमा को नहीं मानता। दिल जब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उसे समझना आसान नहीं होता। वो हर धड़कन में उसी का नाम सुनना चाहता है, हर ख्वाब में उसी का चेहरा देखना चाहता है। इश्क वो एहसास है जिसे इस पर किसी का जोर नहीं चलता। ये कब, कहाँ और किससे हो जाए कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की मधुर आवाजों में सजा ये गीत प्यार की उसी मीठी दीवानगी का खूबसूरत इजहार है। आइए सुने।
1: मैं जाऊं?
2: अपने दिल से पूछो।
1: दिल

साथियों, रात का अपना एक अलग ही जादू होता है। दिन की भाग दौड़ थम जाती है, शोर खामोश हो जाते हैं और तब दिल अपनी बात खुद से करने लगता है। ऐसे में अगर किसी की याद साथ हो तो रात और भी लंबी और हसीन लगने लगती है। ये गीत उस बेचैन दिल की कहानी है जो किसी अपने के इंतजार में जाग रहा है। आंखों में सपने हैं, दिल में उम्मीद है और हवाओं में किसी के आने की आहट तलाशने की चाहत है। रफी साहब की दर्द में डूबी हुई मधुर आवाज इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई दे देती है कि चांद भी है गुमसुम, सितारे भी खामोश हैं, आज फिर तेरी यादों के पहरे मदहोश हैं। कौन कहता है कि तन्हाई सुनाई नहीं देती, मेरे कमरे में तेरी आहटों के सरगोश हैं।

दोस्तों, कभी कभी किसी की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य उसी एक चेहरे में समेट दिया हो। फिर तो शब्द कम पड़ जाते हैं, नजरें ठहर जाती है और दिल सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, आखिर इतना हसीन रूप बनाया किसने होगा? ये गीत जो अभी आप सुनेंगे, इसमें सिर्फ किसी के रूप की तारीफ नहीं है, बल्कि उस प्रेमी के हृदय की भावना है जो अपने प्रिय को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। किशोर कुमार की दिलकश आवाज में सजा ये गीत प्रेम, प्रशंसा और आकर्षण के मधुर रंगों से भरा हुआ है। कि तेरी सूरत में जैसे चांदनी का नूर रहता है, तेरी बातों में जैसे प्यार का सुरूर रहता है, तुझे देखा तो लगा रब ने बड़ी फुर्सत से लिखा होगा, तेरे चेहरे पर तो आज भी खुदा का नूर रहता है।

कुछ यादें हैं जो दिल से भुलाई न गई, कुछ बातें हैं जो हमसे सुनाई न गई। वक्त ले गया बहुत कुछ मेरी जिंदगी से, मगर कुछ तस्वीरें हैं जो मिटाई न गई। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आगे दें और आप सुने ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।

0: के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister,